सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की इस मधुर शांत और सुनहरी बेला में आप सभी का दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं वागड़ की आवाज, यानी कि आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूं आप सभी के साथ दोस्तों, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। हाजिर हो चुकी हूं आपके लिए इस नई सुबह की ताजगी, अपनापन और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर। साथियों, रविवार की सुबह सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये एक एहसास होता है सुकून का, अपनापन का और खुद से जुड़ने का। और इसी एहसास को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रमों की एक प्यारी सी श्रृंखला। तो आइए साथियों, इस सुहानी सुबह के सफर पर चलते हैं साथ साथ। साथियों, दिन की शुरुआत होगी सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना से, जहां भक्ति के मधुर सुर मन को शांति देंगे और आत्मा को सुकून से भर देंगे। तो आइए प्रभु स्मरण के साथ अपने दिन का शुभारंभ करते हैं साथियों। इसी के बाद सुबह 6:30 पर प्रस्तुत है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, जिसमें आप जानेंगे महान व्यक्तित्व के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया को एक नई दिशा दी है। इसी के बाद सुबह 7 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम कथा कहानी, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम है, जिसमें सिर्फ कहानियां सुनाई ही नहीं जाती बल्कि दिल में भी उतारी जाती है और जीवन को एक नई सीख देती है। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट के साथ में। इसी के बाद दोस्तों प्रस्तुत होगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 7:30 पर। साथियों, ये कार्यक्रम बचपन की मासूम हंसी, छोटे छोटे सपने और सच्चे दिल की बातों से जुड़ा कार्यक्रम है, जो हर चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। इसी के बाद दोस्तों 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे मेहमान, जहां मिलेंगे हम कुछ खास लोगों से, उनकी कहानियां, उनके अनुभव और उनके जीवन के प्रेरणादायक सफर के साथ। इसी के बाद दोस्तों 8:30 पर कार्यक्रम गांधी आत्मा दर्शन हम सुनेंगे, जहां बात होगी सादगी, सत्य और अहिंसा के उस मार्ग की, जो आज भी हमें सही दिशा दिखाते हैं। इसी के आगे अब बारी है साथियों एक बेहद खास और घर की खुशबू से भरे कार्यक्रम की, यानी कि कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, जहाँ मिलेंगे दोस्तों पारंपरिक स्वाद, घरेलू नुस्खे और दादी माँ के प्यार से भरे व्यंजन, जो सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखे। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे ठीक सुबह 9 बजे हमारी रेडियो साथी के साथ में। इसी के बाद दोस्तों सुबह 10 बजे बारी है गीत संगीत की, यानी कि कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसमें हम जुड़ेंगे साथियों नए और लोकप्रिय गीतों के साथ, जो आपके दिल को छू जाए। इसी के बाद 11 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें होगी हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारी परंपराओं की मिठास और संस्कृति की झंकार, सब कुछ एक साथ कार्यक्रम लोक संगीत। तो जैसा कि साथियों हम कार्यक्रम की रूपरेखा जान ही पा रहे हैं, इसी के बाद अब अंत में कार्यक्रम हम सुनेंगे ठीक 12 बजे भूले बिसर नगमे, जिसमें हम प्रवेश करेंगे साथियों पुराने गीतों की वो मधुर दुनिया में, जो हमें यादों के खूबसूरत सफर पर ले जाती है। तो साथियों, यह सुबह सिर्फ समय का एक हिस्सा नहीं, यह एक अनुभव है, जहां भक्ति है, सीख है, मासूमियत है और प्रेरणा भी है, साथ ही संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। तो बने रहिएगा साथियों हमारे साथ, क्योंकि यहां हर आवाज है खास और हर पल है आपके नाम। तो श्रोता साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को, और शुरुआत करते हैं साथियों आज की सभा की पहले कार्यक्रम आराधना से,

0: सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है।
1: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
0: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हंगरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
1: भाई ने बोनो आप एकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो होवे आज नाना ना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर
1: संघर्ष के बीच एक एहसास जो हमें मजबूत बनाता रहा यही महापुरुषों की अनकही प्रेम

साथियों, आजादी हमें विरासत में नहीं मिली, इसे लाखों वीरों ने अपने त्याग, संघर्ष और बलिदान से अर्जित किया है। जो राष्ट्र अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता है, वही भविष्य की चुनौतियों का

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
1: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है जागृति जी कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को अपनी नियत समय पर नई बातचीत के साथ में। आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान और आज का भारत को लेकर। श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को स्वतंत्र कराया, यदि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पा रहे हैं और लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, तो जागृति जी यह उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है।
0: बिल्कुल,
1: स्वतंत्रता केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के साहस, धैर्य और अटूट विश्वास की कहानी है। आज का भारत उन्हीं सपनों की नींव पर खड़ा है जिन्हें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून पसीने से सींचा था।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, आजादी केवल एक शब्द नहीं बल्कि उन अनगिनत सपनों और संघर्षों और बलिदानों का परिणाम है। श्रोताओं, जब हम आज खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र होकर सांस लेते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, साथ ही अपने भविष्य के सपने भी देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुई है।
1: बिल्कुल,
0: इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, त्याग, साहस, धैर्य और देशभक्ति छिपी हुई होती है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ महान नेताओं की कहानी नहीं, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने किसी न किसी रूप में आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। किसी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया, किसी ने क्रांतिकारी विचारों से युवाओं में चेतना जगाई, किसी ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से संघर्ष किया, तो किसी ने अपने लेखन, शिक्षा, संगठन और सामाजिक जागरण के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए तैयार किया। भारत सरकार के स्रोत भी स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना आजाद और अनेक अन्य नेताओं, सेनानियों की भूमिकाओं को रेखांकित करते हैं।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहा।
0: बिल्कुल,
1: इस दौरान श्रोता साथियों, देश के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसानों पर भारी कर लगाया गया, कुटीर उद्योग नष्ट किए गए, भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया और स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया। लेकिन जागृति जी, भारत की धरती ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। किसी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया, किसी ने क्रांति का रास्ता चुना, तो किसी ने कलम और विचारों से लोगों को जागरूक किया। सभी का लक्ष्य एक ही था, स्वतंत्रता पाना।
0: बिल्कुल,
1: किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता हो तब हर कठिनाई छोटी लगने लगती है, क्योंकि भारत की आजादी किसी एक व्यक्ति या एक आंदोलन की देन नहीं है, यह लाखों ज्ञात अज्ञात वीरों के त्याग का परिणाम है।
0: बिल्कुल अंजलि, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा थी। 1857 का विद्रोह इस संघर्ष के महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक था।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहुत सारे अन्य वीरों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध साहस का परिचय दिया था। हम देखते हैं अंजलि कि समय के साथ स्वतंत्रता की चेतना देश के अलग अलग हिस्सों में फैलती गई। लोगों ने समझना शुरू किया कि विदेशी शासन से मुक्ति केवल राजनीतिक आवश्यकता नहीं बल्कि आत्मसम्मान का भी प्रश्न है। बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन ने संगठित रूप लिया। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को जन आंदोलन का प्रभावी माध्यम बनाया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ने देश के सामान्य नागरिकों को भी स्वतंत्रता के संघर्ष से जोड़ दिया था। और दूसरी ओर हम बात करें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद की, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारियों ने युवाओं में साहस, देश प्रेम और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की भावनाओं को मजबूत किया था।
1: बिल्कुल जागृति जी, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का आह्वान करके लाखों भारतीयों में नई ऊर्जा का संचार किया।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और आत्मसम्मान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखा दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए महिलाओं का योगदान भी पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसके अलावा हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके नाम इतिहास की पुस्तकों में कम मिलते हैं, लेकिन उनके त्याग के बिना आजादी का सपना पूरा नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: किसानों, मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थियों और आदिवासी समुदाय ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सबसे बड़ा संदेश यही था कि सत्य, अहिंसा और आत्मबल। गांधी जी का मानना था श्रोताओं के अन्याय का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए मनुष्य को अपने भीतर नैतिक शक्ति विकसित करनी होगी। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी चरखा और आत्मनिर्भरता को स्वतंत्रता के संघर्ष से जोड़ा। उनके नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलनों ने आम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं और समाज के कई वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने। हम कह सकते हैं कि गांधी जी का योगदान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, वे सामाजिक सुधार, स्वच्छता, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता को भी स्वतंत्र भारत के लिए आवश्यक मानते थे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हम जान रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान क्या रहा और आज का भारत किस तरीके से स्वतंत्र है। आगे भी निरंतर इस विषय पर श्रोता साथियों से बातें बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य योगदान किस तरीके से रहा, यही श्रोता साथियों, स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है, इसका अर्थ है अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को समझना, कानून का सम्मान करना, समाज में भाईचारा बनाए रखना और देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभाना। आज हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन हमें गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव, पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यही जागृति जी आज की सच्ची देशभक्ति है। देश केवल सीमाओं से नहीं बल्कि अपने जागरूक नागरिकों से महान बनता है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों की हम बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को देखें तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से ऊपर उन्होंने देश को रखा था। उन्होंने हमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दिलाई बल्कि नागरिक जिम्मेदारी का अर्थ भी समझाया। आज हमारे पास शिक्षा के अवसर है, तकनीक है, संचार के साधन है और विकास के बहुत सारे रास्ते हैं। इसलिए आज देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। अगर स्वतंत्रता सेनानियों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष किया तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अशिक्षा, भेदभाव, भ्रष्टाचार, जैसा कि अभी आपने बताया था, हिंसा, अंधविश्वास, पर्यावरण प्रदूषण और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं के विरुद्ध जागरूकता पैदा करें।
0: बिल्कुल जागृति जी, 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी प्राप्त की, लेकिन उसके बाद देश के सामने एक नई चुनौती थी, एक ऐसे भारत का निर्माण जहां हर नागरिक को सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर मिल सके।
1: बिल्कुल,
0: आज जब हम अपने देश की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह प्रगति केवल सरकारों की नहीं बल्कि देश के करोड़ों मेहनतकश नागरिकों, किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, सैनिकों, डॉक्टरों, महिलाओं और युवाओं के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आज शिक्षा गांव-गांव तक पहुंच रही है, बेटियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। श्रोता साथियों, डिजिटल तकनीक के माध्यम से सीखने के नए अवसर भी बढ़े हैं, लेकिन अभी भी जागृति जी यह सुनिश्चित करना होगा हम सभी को कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे, क्योंकि शिक्षित समाज ही सशक्त समाज बनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक उसकी युवा आबादी है। आज की युवा केवल भविष्य के नागरिक नहीं बल्कि वर्तमान के निर्माता भी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों से तीन बड़ी बातें जरूर सीखनी चाहिए, जैसे कि पहली है अंजलि, सपना देखना। स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय स्वतंत्र भारत का सपना देखा जब परिस्थितियां बहुत कठिन थी। आज के युवा भी बड़े लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। दूसरी है अनुशासन। बड़ा परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं आता, उसके लिए निरंतर प्रयास और अनुशासन बहुत जरूरी होता है। और तीसरी आती है देश के प्रति जिम्मेदारी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये कहना चाह रहे हैं कि देशभक्ति केवल नारे लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी।
1: अपने काम को ईमानदारी से करना भी देशभक्ति है। एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है अंजलि, शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, किसान मेहनत से खेती करता है, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाता है और नागरिक कानूनों का सम्मान करता है, ये सभी राष्ट्र निर्माण के कार्य है। स्वतंत्रता हमें अधिकार देती है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें अपने संविधान का सम्मान करना होगा, दूसरों के अधिकारों और विचारों का भी सम्मान करना होगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी होगी, पर्यावरण को बचाना होगा, समाज में भेदभाव कम करने के लिए प्रयास भी करने होंगे, हमें सोशल मीडिया के युग में भी जिम्मेदार नागरिक बनना होगा, किसी भी सूचना को बिना जांचे आगे बढ़ाने के बजाय उसकी सत्यता समझनी होगी। आज देश की सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है अंजलि, बल्कि साइबर सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और सूचना की विश्वसनीयता भी आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें केवल आजाद भारत ही नहीं दिया है बल्कि एक ऐसी सोच भी दी है जिसमें साहस, त्याग, एकता और देश प्रेम सबसे ऊपर है। उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सोचा। उनका एक ही सपना था, ऐसा भारत जहां हर नागरिक सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। आज हम उनके सपनों के भारत में जी रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस स्वतंत्रता का सम्मान करें और अपने अधिकारों के साथ साथ, जैसा कि आपने भी बताया, कि अपने कर्तव्यों का हमें पूरी निष्ठा से पालन करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम अपने गांव, घर, विद्यालय, कार्यस्थल, समाज में ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी का परिचय देंगे तो यही हमारे स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वतंत्रता केवल इतिहास की तारीख नहीं, यह हर दिन अपने देश, समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प है। आजादी का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि हम अपने देश को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान हमारा इतिहास है और उनका आदर्श हमारा भविष्य। इसलिए हम सभी को मिलकर ऐसा भारत बनाना है जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व कर सके।
1: बिल्कुल अंजलि, हमें ऐसा भारत बनाना है जहां शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, जहां युवा अपने सपनों को पूरा कर सके, जहां महिलाएं सम्मान और समान अवसर के साथ आगे बढ़े, जहां किसान समृद्ध हो, गांव आत्मनिर्भर हो, पर्यावरण सुरक्षित हो और समाज में एकता बनी रहे। श्रोताओं, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजाद भारत दिया है। अब इस आजाद भारत को समृद्ध, शिक्षित, संवेदनशील, स्वच्छ और मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: हिंदुस्तान की कसम।
1: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक महान पुरुष के जीवन परिचय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
2: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक और शिक्षा प्रद कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ और इस कहानी का शीर्षक है श्रोता साथियों, माँ के बाद भी रहे मायका। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हम सभी जानते हैं कि माँ का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। अगर माँ नहीं होती है तो हमारा जीवन ही पूरा सुना सुना हो जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे कि माँ के बाद भी किस तरह हमारा मायका बना रहे इस कहानी को। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी का शीर्षक है माँ के बाद भी रहे मायका। जी हाँ साथियों, जरा सोचिए एक बेटी के लिए मायका क्या होता है। मायका सिर्फ एक घर नहीं होता दोस्तों, वो एक एहसास होता है, एक सुकून होता है जहाँ बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन उसकी पहचान हमेशा घर की बेटी ही रहती है। लेकिन कई बार जिंदगी ऐसा मोड़ लेती है दोस्तों जब माँ इस दुनिया से चली जाती है और तभी मन में एक सवाल उठता है, क्या माँ के बाद भी मायका रहता है। आज की कहानी इसी सवाल का जवाब है। दोस्तों कहानी शुरू होती इस तरह से, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक घर था, मिट्टी का आंगन, तुलसी का चोरा और दरवाजे पर लटकती घंटी। उस घर की रौनक थी माँ सावित्री देवी, उनकी एक बेटी थी रीमा और एक बेटा था विक्रम। रीमा बचपन से ही माँ की सबसे लाडली थी। माँ उसके बाल बनाती, स्कूल भेजती और रात को कहानी सुनाकर सुलाती। जब रीमा की शादी हुई तो विदाई के समय माँ ने उसे गले लगाकर कहा था, बेटी ये घर तुम्हारा था हे और हमेशा रहेगा। जब भी मन भारी हो मायके का दरवाजा हमेशा खुला मिलेगा। साथियों उस दिन रीमा बहुत रोई थी लेकिन माँ के शब्द उसके दिल में बस गए थे। साल गुजरते गए, रीमा अपने ससुराल में खुश थी लेकिन हर त्योहार हर खुशी में वो अपने मायके को जरूर याद करती थी। माँ के हाथ की रोटियाँ, माँ की डांट, माँ का प्यार सब कुछ उसे फिर से बच्चा बना देता था। लेकिन एक दिन वो खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया और वो खबर थी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रीमा जब मायके पहुंची तो वही घर, वही आंगन, वही दीवारें थी लेकिन माँ की आवाज नहीं थी। उसने आंगन में कदम रखा तो लगा जैसे घर की धड़कन ही रुक गई हो। वो माँ के कमरे में गई, माँ की पुरानी साड़ी अलमारी में रखी थी। रीमा ने साड़ी को छुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, माँ अब मैं किससे कहूंगी कि मुझे मायके आना है। समय बीता, रीमा कई महीनों तक मायके नहीं आई। उसके मन में डर था श्रोता साथियों कि क्या अब भी ये घर मेरा मायका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के बाद ये रिश्ते भी खत्म हो गए हो। एक दिन उसका भाई विक्रम अचानक उसके घर आया। वो बोला, दीदी आप इतने दिनों से मायके क्यों नहीं आई। रीमा चुप रही, फिर धीरे से बोली, विक्रम माँ के बिना मायका कैसा। विक्रम मुस्कुराया और उसकी बात सुनकर बोला, दीदी अगर माँ ही मायका थी तो क्या हम कुछ भी नहीं है। रीमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। विक्रम बोला, दीदी माँ ने हमें सिर्फ जन्म नहीं दिया, उन्होंने हमें रिश्तों की जिम्मेदारी भी सिखाई है। अगर माँ के बाद मायका खत्म हो जाए तो इसका मतलब हम माँ की सीख भूल गए। फिर उसने रीमा का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी मायका सिर्फ माँ का कमरा नहीं होता, मायका वो घर होता है जहाँ बेटी का हक कभी खत्म नहीं होता। रीमा की आंखें भर आई, उसे पहली बार एहसास हुआ श्रोताओं कि माँ का जाना रिश्तों का अंत नहीं है बल्कि उनकी परीक्षा है। कुछ दिनों बाद रीमा मायके आई, वही आंगन था, वही तुलसी थी, वही दीवारें थी लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं था। विक्रम की पत्नी ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया और कहा, दीदी ये घर आपका भी है। रीमा ने आंगन की मिट्टी को छुआ और मन ही मन माँ से कहा, माँ आपने सही कहा था, मायका कभी खत्म नहीं होता। श्रोताओं आज की इस कहानी में एक बहुत बड़ा और गहरा सच छिपा है कि कई बार हम सोचते हैं कि माँ के बाद मायका खत्म हो जाता है लेकिन सच ये है श्रोताओं कि मायका तब खत्म होता है जब रिश्तों में अपनापन खत्म हो जाता है। अगर भाई अपनी बहन को वही सम्मान दे, अगर परिवार उसे वही अपनापन दे तो माँ के बाद भी मायका तो जिंदा ही रहता है। याद रखिए श्रोताओं, माँ घर की आत्मा होती है लेकिन मायका रिश्तों की जिम्मेदारी से जिंदा रहता है। और आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि जिस घर में बहन का स्वागत आज भी मुस्कान से होता है वही घर सच में मायका कहलाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी, आगे भी कुछ बातें रहेगी जो मैं आपसे करूंगी लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी माँ और मायके के रिश्ते को लेकर। अक्सर कहा जाता है श्रोता साथियों कि मायका माँ से जुड़ा होता है, क्योंकि माँ ही उस घर की आत्मा होती है। माँ का प्यार, माँ की डांट, माँ की रसोई, सब कुछ मायके को खास बनाता है। लेकिन श्रोताओं, यहाँ एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। माँ के जाने के बाद भी मायका खत्म नहीं होता, अगर रिश्तों में सच्चाई है, अपनापन जिंदा हो तो। भाई अगर बहन को वही सम्मान दे, परिवार अगर उसे वही हक दे, तो मायका हमेशा जिंदा रहता है हम बेटियों के लिए। माँ से मायका सजता है, लेकिन रिश्तों से वो बसता है। श्रोताओं, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ हर कोई अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझा है, वहाँ मायका एक भावनात्मक सहारा बनकर खड़ा रहता है। जब जीवन में परेशानियां बढ़ती है, जब मन टूटने लगता है, तब मायका एक ऐसी जगह बन जाता है श्रोताओं, जहाँ बेटी बिना डर के रो सकती है, वो अपनी बात कह सकती है और फिर से खुद को संभाल सकती है। कहते हैं ना दोस्तों कि मायका वो शक्ति है जो एक बेटी को हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। मायका सिर्फ एक व्यक्तिगत भावना नहीं है, ये समाज की मजबूत नींव है श्रोताओं। जब एक बेटी को उसके मायके से सम्मान और सहयोग मिलता है, तो वो अपने जीवन में और भी मजबूत बनती है। वो अपने परिवार को बेहतर तरीके से संभाल पाती है, समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। इसीलिए मायका केवल एक घर नहीं है, बल्कि एक सामाजिक ताकत है। कहते हैं दोस्तों कि मजबूत बेटियां ही मजबूत समाज बनाती है, और मायका उन्हें मजबूत बनाता है। आज के समय में हम देखते हैं कि रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है, लोग व्यस्त हो गए हैं, समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन श्रोताओं, मायके का महत्व कभी कम नहीं होना चाहिए। जरूरत है कि हम रिश्तों को समय दें, अपनापन बनाए रखें, ताकि हर बेटी को एहसास हो सके कि उसका मायका आज भी उसका है। रिश्ते समय से नहीं, भावना से चलते हैं। मायका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। आज जब हम इस शब्द मायका को सुने, तो सिर्फ एक घर की कल्पना मत कीजिए श्रोताओं, महसूस कीजिए उस प्यार को, उस अपनापन को, उस सुरक्षा को, जो एक बेटी को हर मुश्किल में संभालता है। याद रखिए, मायका वो जगह नहीं जहाँ आप सिर्फ जन्म लेते हैं, मायका तो दोस्तों वो एहसास है जहाँ हम हर बार खुद को फिर से पा लेते हैं। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में भी एक बहन है श्रोताओं, तो उसका मायका कभी खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। इसीलिए दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि जब एक लड़की शादी के बाद अपने नए घर जाती है, तो उसके जीवन में कई बदलाव आते हैं, नई जिम्मेदारियां आती है, नए रिश्ते आते हैं, नई उम्मीदें आती है। लेकिन इन सब के बीच उसका मन थक जाता है, तो उसे याद आता है उसका मायका, क्योंकि मायका वो जगह है दोस्तों जहाँ उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता, जहाँ उसकी गलतियों पर भी उसे समझा जाता है, ठुकराया नहीं जाता। मायका एक ऐसा एहसास है दोस्तों जहाँ मैं को बिना बदले स्वीकार किया जाता है। मायका वो आंगन है जहाँ एक लड़की ने पहली बार चलना सीखा, जहाँ उसने गिरकर उठना सीखा, जहाँ उसकी छोटी छोटी खुशियों पर भी ताली बजाने वाले लोग थे। वही माँ का आंचल, वही पापा का साया, वही भाई बहनों की शरारतें। मायका दरअसल बचपन की वो खुशबू है दोस्तों, जो उम्र बढ़ने के बाद भी दिल में बसी रहती है। जहाँ बचपन मुस्कुराता है, वही मायका कहलाता है। ये थी आज की कहानी और इससे जुड़ी कुछ बातें। आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी बहनों का मायका ऐसे ही सजाए रखेंगे और अपने बहनों को वही हक देंगे जिस तरह से इस कहानी के माध्यम से विक्रम ने अपनी बहन को दिया। अब देख पा रहे हैं दोस्तों कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।

दोस्तों इस गीत के साथ विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं श्रोताओं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दोस्त जागृति को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना ना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
5: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
4: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार, बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू, बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातु जोड़ो,
7: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी। आ गई हूँ फिर से कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम हर रविवार को आपको कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में कुछ नई नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। तो जैसा कि आज भी रविवार का दिन है, तो आज भी कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नई कहानियाँ।

0: वेलकम बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में। जैसा कि बच्चों, गीत संगीत तो कार्यक्रम में हमारे आपसे चल ही रहे हैं, तो अब मुझे आपको बताना है कि आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे बातचीत की पहली कहानी कौन सी रहने वाली है। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में जो कहानी मेरी आपसे रहने वाली है उसका नाम है चुटकी और जादुई जंगल की खोज। है ना बिल्कुल अनोखा नाम बच्चों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हो रही है। बच्चों, चुटकी का अनोखा दिन, यानी कि चुटकी एक प्यारी सी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गाँव में रहती थी। बच्चों, उसका सबसे बड़ा शौक था पेड़ पौधों और जानवरों के साथ खेलना। बच्चों, हर सुबह वह जंगल के पास जाकर वहाँ की ताजगी का आनंद लेती थी। एक दिन क्या हुआ, जब चुटकी अपने दोस्त मोंटू के साथ जंगल में खेल रही थी, उसे एक पुराना और रहस्यमयी नक्शा मिला। नक्शे पर रंगीन पेड़ों, चमकते सितारों और अजीब से झील का नाम लिखा हुआ था। बच्चों, चुटकी के दोस्त मोंटू ने उत्सुकता से पूछा, अरे चुटकी, ये क्या है? चुटकी ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोली, मुझे लगता है कि यह किसी जादुई जगह का नक्शा है। तुम क्या कहते हो, हमें इसे खोजना चाहिए। अगले दिन बच्चों, सुबह चुटकी और मोंटू और उनका पालतू खरगोश बबलू नक्शे को लेकर जादुई जंगल की खोज पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई मजेदार चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेड़ों पर झूलती हुई तितलियां, गाते हुए पक्षी और बोलने वाला तोता। बच्चों, उनको देखकर तोता बोलता है, तुम जादुई जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? वहां पहुंचने के लिए तुम्हें तीन पहेलियां हल करनी होगी। तो चुटकी ने पूछा कि वो तीनों पहेलियां क्या है। तो तोता बोला, सबसे पहले पहली सुलझाओ। बच्चों, उसने कहा, ऐसा क्या है जो हमेशा चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं? मोंटू ने सोचा, बोला, वक्त। हाँ, जवाब है वक्त। बच्चों, फिर तोता मुस्कुराया और बोला, सही जवाब, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर क्या हुआ बच्चों, रास्ते में चुटकी और उसके दोस्तों ने एक नन्हे भालू को देखा जो पेड़ से गिरकर घायल हो गया था। चुटकी ने तुरंत अपने पास रखी दवा से उसकी मदद की। भालू, जिसका नाम गोलू था, उनकी मदद से वो बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें जादुई जंगल का रास्ता दिखा सकता हूँ। बच्चों, आगे बढ़ते हुए वे एक चमकती हुई झील पर पहुंचे। वहां एक बोलती हुई मछली मिली। मछली ने कहा, अगर तुम इस झील को पार करना चाहते हो तो मुझे यह बताओ कि किस चीज का स्वाद सबको अच्छा लगता है लेकिन दिखने में नहीं होती। बच्चों, ये सुनकर चुटकी के मन में सबसे पहले जवाब आया। उसने कहा, ज्ञान। फिर क्या हुआ, मछली ने मुस्कुराकर रास्ता खोल दिया। बच्चों, जब वे जादुई जंगल की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे, पक्षी गाना गा रहे थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। लेकिन तभी एक बड़ा बंदर आया और बोला, यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी आखिरी पहेली का जवाब देना होगा। बंदर ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आवाज के सब कुछ बदल देती है? अब तो बच्चों मोंटू और गोलू सोच में पड़ गए, लेकिन चुटकी को भी ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आवाज के सब कुछ बदल देती है। इतने में वो सोच ही रहे थे कि चुटकी ने जवाब दिया, क्या वह समय है? बच्चों, बंदर ने हंसते हुए उन्हें आगे जाने दिया, यानी कि यह सही जवाब था। फिर क्या हुआ, जंगल के अंदर उन्हें पता चला कि वहाँ के जानवर एक दुष्ट जादूगर के कारण परेशानी में थे। जादूगर ने जंगल के सारे पानी के स्रोतों को बंद कर दिया था। बच्चों, चुटकी ने अपने दोस्तों के साथ जानवरों की इस समस्या को दूर करने के लिए एक योजना बनाई। फिर क्या हुआ, गोलू और बबलू ने जादूगर का ध्यान भटकाया। मोंटू ने उसके महल के गेट खोले और चुटकी ने जादुई नक्शे की मदद से उसके पानी के स्रोत को खोल दिया। बच्चों, जैसे ही पानी बहने लगा, जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। जादूगर ने चुटकी से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। बच्चों, जंगल ने चुटकी और उसके दोस्तों को एक चमकता हुआ जादुई सितारा दिया जो कि उनकी बहादुरी का प्रतीक था। फिर क्या हुआ, चुटकी, मोंटू और गोलू खुशी खुशी अपने गांव लौट गए। उन्होंने ये सीखा बच्चों कि सच्ची दोस्ती और बहादुरी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी, चुटकी और जादुई जंगल की खोज। इस कहानी से हमें ये सीख मिली बच्चों, कि हर मुश्किल का हल तो मिल सकता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो। और हमें अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए। यानी कि बच्चों, ये कहानी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी, क्योंकि इस कहानी से हमें एक चीज ये भी सीखने को मिली कि अगर हमें किसी भी मुश्किल को पार करना है तो उसके लिए हमें धैर्य का उपयोग भी करना होगा। यानी कि हमारे पास में धैर्य की क्षमता भी होनी चाहिए। बच्चों, हमने देखा कि अगर तोते की पहेली का जवाब चुटकी और मोंटू धैर्य के साथ नहीं देते तो शायद उस पहेली का जवाब उन्हें नहीं पता होता। तो ऐसे हम कह सकते हैं बच्चों कि हमें हमेशा अपनी मुश्किलों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। तो जैसा कि बच्चों, ये कहानी तो हमारी पूरी हो गई। अब मुझे आपको मेरी दूसरी कहानी के बारे में बताना है। तो दूसरी कहानी के बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में, आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी के साथ में, और सुनते रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM।
1: चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकी चक चो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकरक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकी चक चो

बच्चों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने चुटकी और जादुई जंगल की खोज की कहानी के बारे में जाना था, अब यहीं बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। बच्चों, हमारी दूसरी कहानी का नाम है जादुई पेंसिल और टिंकू का कारनामा। यानी कि बच्चों, टिंकू एक छोटे से गाँव में रहता था। वह बहुत ही शरारती था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। आपको बताऊं तो पढ़ाई में वह ज्यादा तेज नहीं था और हमेशा अपनी कॉपी किताबों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बनाया करता था, क्योंकि इसी में उसको खुशी मिलती थी। एक दिन क्या हुआ, स्कूल से लौटते समय उसने एक बूढ़े आदमी को सड़क किनारे बैठे देखा। देखने में तो वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। बच्चों, टिंकू ने उससे पूछा, दादाजी क्या मैं आपकी मदद कर दूं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने टिंकू को एक सुनहरी पेंसिल दी और कहा, ये पेंसिल जादुई है, तुम इसका इस्तेमाल ध्यान से करना। बच्चों, टिंकू ने उस पेंसिल को हाथ में ले लिया और खुश होकर अपने घर पर आ गया। अगले दिन क्या हुआ, जब टिंकू स्कूल में अपनी कॉपी पर कुछ लिख रहा था तो उसने देखा कि जो कुछ वह लिख रहा था वह सच हो रहा था। उसने एक पतंग का चित्र बनाया और अचानक से वह देखता है कि उसकी कॉपी से एक असली पतंग निकलकर उड़ने लगी। बच्चों, टिंकू ये सब देखकर खुश तो था, लेकिन उसे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। अब टिंकू ने अपनी जादुई पेंसिल से गांव के लोगों की मदद करने का सोचा। वह जो भी चीज बनाता वह सच होती जाती थी। अगर किसी के पास खाने को कुछ नहीं होता था तो वह उनके लिए खाना बनाता, और अगर किसी के पास कपड़े नहीं होते तो वह उन्हें कपड़े भी बना कर दे देता था। लेकिन बच्चों, टिंकू के दोस्तों को जब पेंसिल के बारे में पता चला तो उनमें से कुछ ने इसका गलत फायदा उठाने की सोची। उन्हीं में से एक था मोनू, जो टिंकू का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने टिंकू की पेंसिल चुरानी चाही। उसने सोचा कि वह पेंसिल से अपने लिए ढेर सारा सोना बनाएगा। उसने सोने के सिक्कों का चित्र बनाया, लेकिन बच्चों वह देखता है कि पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, पेंसिल पर से एक छोटा सा संदेश ऊपर की ओर दिखाई देने लगा। उसमें लिखा था कि यह पेंसिल केवल अच्छे कामों के लिए बनाई गई है। बच्चों, ये पढ़कर मोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने टिंकू से माफी मांगी। तब से बच्चों, टिंकू को पता चल गया कि उसे इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना है। फिर टिंकू ने पेंसिल का सही इस्तेमाल करने की ठानी। उसने गाँव में एक बड़ा खेल का मैदान बनाया जहाँ बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे। उसने गाँव में एक पुस्तकालय भी बनाई ताकि बच्चे वहां जाकर किताबें पढ़ सके। बच्चों, धीरे धीरे टिंकू का गांव खुशहाल बन गया और जादुई पेंसिल की बदौलत हर कोई खुश था। लेकिन टिंकू को यह समझ में आ गया था कि असली जादू किसी चीज में नहीं बल्कि इरादों और मेहनत में होती है। एक दिन जादुई पेंसिल ने आखिरी बार कुछ लिखा, अब मेरा काम पूरा हुआ। टिंकू, तुमने सच्चे दिल से दूसरों की मदद की, अब यह जादू तुम्हारे अंदर है। और फिर बच्चों, पेंसिल धीरे धीरे गायब हो गई। टिंकू अब समझ गया था कि जादू असली नहीं बल्कि मेहनत और अच्छे कामों का परिणाम होता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, जादुई पेंसिल और टिंकू का कारनामा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि सच्चा जादू हमारी अच्छाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना में होता है, ना कि किसी चीज में। तो जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे कहानियां तो पूरी हो चुकी हैं बच्चों, जैसा कि हमने दो कहानियों के माध्यम से ये जान लिया, ये जो कहानियां होती है वो हमारे लिए कितनी प्रेरणादायी होती है। और अगर इन कहानियों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल रूप से जी सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों, कहानियां हमारी आपसे पूरी हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं यहाँ पर एक और गीत।

प्यारे बच्चों, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के कार्यक्रम में जो भी कहानियां मैंने आपको सुनाई हैं, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो बच्चों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, बागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों, ये मुलाकात हमारी आपसे फिर होगी अगले रविवार को कुछ नई कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अब आपकी दीदी कशिश दीदी को आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। बाय बाय बच्चों।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, समाज सेवा केवल दूसरों की मदद करने का नाम नहीं है, बल्कि ये उस जिम्मेदारी को समझने का नाम है दोस्तों, जो हमें अपने समाज और अपने आसपास के लोगों के प्रति निभानी चाहिए। जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति का हाथ थामते हैं, किसी बच्चे को सही दिशा दिखाते हैं, किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनते हैं, या किसी परेशान व्यक्ति के लिए उम्मीद की वजह बनते हैं, तब हम समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा रहे होते हैं। साथियों, बदलाव हमेशा बड़े कामों से नहीं आता। कई बार हमारी छोटी सी संवेदनशीलता और मदद किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, समाज सेवा को केवल कर्तव्य नहीं बल्कि इंसानियत को मजबूत करने का माध्यम मानना चाहिए।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम कार्यक्रम हमारे मेहमान में हर रविवार को एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं, तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में हमारे मेहमान जुड़ेंगे। तो आइए श्रोता साथियों, आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम में हमारे मेहमान से। सर नमस्कार।
1: नमस्ते
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वागड़ रेडियो परिवार में। सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: जी मैडम, मेरा नाम नानूलाल रोत है। मैं अधीक्षक हूँ राजकीय किशोर संप्रेषण गृह बांसवाड़ा में मेरा पदस्थापन है।
0: जी जी,
1: मैं गाँव का रहने वाला हूँ आनंदपुरी का, और मैंने 6ठी से 8ठी तक जो कक्षा है वो मिडिल स्कूल में गांव में आनपुरी पढ़ा हूँ मैं, और 9वीं से 12वीं तक मैं डूंगरपुर राजकीय मारो स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ।
0: जी जी।
1: इसके बाद मैंने BSc ग्रेजुएशन वो मैंने गुरु गोविंद कॉलेज बांसवाड़ा से किया है। इसके बाद मैंने नर्सिंग डिप्लोमा किया। इसके बाद मैंने मेडिकल में सेवाएं दी 9 साल तक। इसके बाद मैंने RS एग्जाम के माध्यम से मैंने इसमें सेवा का मौका दिया, तो मैं इसमें समाज कल्याण विभाग में कैडर मिला और इसमें मैं अधीक्षक पद पर वर्तमान सेवा दे रहा हूँ।
0: जी सर, तो सर ये तो आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान पाए हैं कि आपका शिक्षा का क्षेत्र किस प्रकार से रहा। अब यही हम आपसे कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि आपका इस क्षेत्र से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था।
1: इसमें क्या है कि मुझे कहीं कहीं कुछ मास लेवल पर लोगों को बेनिफिट करवाना था, जैसे मेरा अंदर की जो प्रेरणा थी कि मुझे कुछ करो समाज के लिए, बच्चों के लिए, हित के लिए, कुछ सेवा के माध्यम से। तो मैंने सर सोचा कि मेरा कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा, तो मैंने मेडिकल में भी एक सेवा देने की कोशिश की। वहाँ से भी मेरा और जागृत हुई कि मुझे कुछ और भी मास लेवल लोगों को फायदा दिलवाना है।
0: जी जी।
1: मैंने फिर समाज कल्याण विभाग में सेवाएं दी। इसके फिर इसके बाद मैं इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और इसके माध्यम से ये बच्चों के हितों के बारे में भी अभी सेवाएं दे रहे हैं।
0: तो सर ये तो आपने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताया। अब यही हम जानना चाहेंगे कि आपके बचपन का कोई ऐसा अनुभव जो आपको आज भी याद है और आपको आगे बढ़ने में वहाँ प्रेरणा मिली थी।
1: जी मैडम, ऐसा हुआ था कि मैं जो 9वीं कक्षा में पढ़ा था हमारा स्कूल डूंगरपुर, तो मुझे डॉक्टर साहब के पास में वो सर्टिफिकेट प्लान तो बनाने जाते थे, तो अटेस्ट कराने जाते थे, बजट ऑफिसर बनता है, तो उसमें क्या है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो साइन करवाते थे बजट ऑफिसर के। साइन कराने गया तो मेरे से वो सीट उल्टी लग गई, तो मेरे को डाटा मैंने वहां से ठान लिया कि मैं कोई गजेट ऑफिसर बनूंगा और मैं भी ये शपथ पत्र जो होते हैं एफिडेविट करने का जो मौका मिलेगा उसमें कुछ मुझे कुछ प्रेरणा मिलेगी, ये करना है। वहां से मैंने कोई डॉक्टर बनूंगा अगर वहां सपना पाला,
0: बिल्कुल
1: तो बन नहीं पाया। मैं मेडिकल शिक्षा में जाके मैं थोड़ा नर्सिंग ऑफिसर बना, मैं तो वहाँ सेवाएं दी। इसके बाद वहां से मैंने को मुझे गजेट ऑफिसर भी बनना था, वो पोस्ट गजेट ऑफिसर नहीं थी, मैं प्रसंग सेवा में जाने का ठाना। एग्जाम दिया और इसके बाद से मुझे गजेट ऑफिसर बनने का मौका मिला, तो वो मेरा सपना उस प्रेरणा से घटना छोटी सी घटना से मुझे जुड़ा हुआ है, उससे कि मुझे प्रेरणा मिली।
0: जी सर, आपने सही कहा। तो अब यही कार्यक्रम के माध्यम से आप हमें ये बताइए कि जहां आज आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं वहां पहुंचने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
1: जी, इसमें मुझे क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव से निकला हूँ और मुझे पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आर्थिक कंडीशन भी सही नहीं थी, पिताजी की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मेरा खर्चा वगैरह पूरा कर सके। तो मैंने फिर वो अष्टम लेके अध्ययन किया डूंगरपुर 9वीं के बाई कक्षा तक मैं आश्रम 27 में रहा, तो हॉस्टल में रहने का भी मुझे इसका बेनिफिट मिला और आर्थिक चुनौती सामना करना पड़ा। तो आगे भी मुझे कैनाल कॉलेज लेवल पर भी मैं जैसे कि आर्थिक चुनौती सामना किया, फिर भी मैंने चुनौती का सामना करते हुए मैंने कैनाल आगे बढ़ा और एक ये आर्थिक परेशानियों को मैंने आगे आड़े आने नहीं दिया, पत्ती आगे कोशिश करके मैं अपने सफलता के लिए मैं अग्रसर हुआ।
0: बिल्कुल सर, तो सर आपने जैसा कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को बताया है कि आज आप जिस सफलता के मुकाम पर पहुंच गए हैं वहां पहुंचने के लिए आपने ढेर सारी चुनौतियों का सामना किया था। यहीं अब आप हमें ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि आप बाल सुधार को लेकर प्रयास कर रहे हैं, तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आज के समय में बच्चे किन किन प्रमुख कारणों से अपराध की ओर बढ़ रहे हैं।
1: जी, आज के जो सोशल मीडिया का युग है उसमें जो बच्चों को कोई जानकारी होती नहीं है, वो अनचाहे बच्चों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसमें जो बच्चे होते हैं 0 से 18 बच्चों को बालक की श्रेणी माना जाता है, तो उनसे कोई गलती हो जाती है के लिए क्या सरकार ने इससे कुछ नियम बना रखे है उनको सुधार करने के लिए, तो उसमें जेजे एक्ट का प्रावधान बना रखा है और पोस्को एक्ट 2012 इस तरह के प्रावधान बनाए हैं। इसके तुम बच्चों को ऐसा कानून की जानकारी से उनको बताया जाता है, इसका बच्चों के उनके बचाव के लिए उनके सहयोग के लिए ऐसे एक्ट बनाए हैं और बच्चों को सही न्याय मिले, इसके लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और एक्ट में प्रावधान है और ऐसे बच्चों के लिए किशोर न्याय बोर्ड समिति बनी हुई है जिला स्तर पे और जिला बाल समिति बनी हुई है। जो किशोर न्याय समिति जो बनी हुई है जे एक्ट के प्रावधान के तहत, वो विधि संघर्ष बच्चे जो कानून का उल्लंघन करते ऐसे बच्चों का वो निर्णय देखती है, उनका बारे में फैसला करती है।
0: बिल्कुल।
1: और जो CWC जो है जिला बाल कल्याण समिति है, वो जो नीड केयर वाले बच्चे हैं, जो फेंके हुए बच्चे अनाथ बच्चे हैं, उनके बारे में उनके सर्वोत्तम हित का वो निर्णय करती है, उनके सर्वोत्तम हित के लिए काम करती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को अपराध की ओर बढ़ने से रोकने के लिए बाल सुधार गृह बनाए गए हैं,
1: जी जी।
0: तो यहीं आप हमें ये बताइए कि बाल सुधार गृह का वास्तविक उद्देश्य क्या है और क्या यह केवल सजा देने की जगह है या बच्चों के पुनर्वास का केंद्र भी है?
1: ये बाल सुधार गृह कोई जेल नहीं है। इसमें क्या बच्चों को उनके जो गलत आदत की वजह से गलत कानून की जानकारी के बाद में उनसे जो गलतियाँ होगी उसके लिए उनको विशेष सुनवाई के लिए उनको रखा जाता है। उसमें पुलिस का माध्यम न हो के किशोर न्याय बोर्ड जो होता है वो अलग से बच्चों की कोर्ट होती है, वो इसके बाद सुनाई करती है। ऐसे बच्चों को जो आते हैं वो तो जजे भी के सामने पेश करते हैं, फिर उनको वो ऐसे बाल सुधार गृह में भेजते हैं। तो बाल सुधार गृह में बच्चों को सुधार किया जाता है, उनको अनुशासन में सिखाया जाता है कैसे रहना है, किससे रहना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, और उनसे जो छोटे में गलतियाँ हुई उसके उनको पश्चाताप करने के अलावा उनको बताया जाता है कि आपने जो गलती हुई उसने आपको भूलवन से हुई है, आपको किसी ने बताया नहीं, ये गलत है कानून इस से, तो उनको इस तरह से सिखाया जाता है आगे से ध्यान रखिए और उनको वापिस अगले जीवन में उनको आगे बढ़ना है तो ये गलतियों को आप नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े और उनको आगे उनको किस तरह से अपना विकास करने से उनको पूरा समझाता है। उसके लिए किशोर न्याय जो हॉस्टल बने हुए हैं, जो संप्रेषण घर बने हुए हैं, उसमें परामर्शदाता रहते हैं, काउंसलर के माध्यम से काउंसलिंग दी जाती है, परीक्षा के माध्यम से उनको ये समझाया जाता है, सुधार किया जाता है, और उनकी सुरक्षा के लिए भी विशेष सुरक्षा में लगाए जाते हैं। उनको दो टाइम भोजन की सुविधा दी जाती है, दो टाइम नाश्ते की सुविधा दी जाती है, और उनकी विशेष ख्याल रखा जाता है और उनकी पूरी केयरिंग होती है, ऐसे बच्चे की तरह केयरिंग करते हैं उनको, ताकि वो उनको अलग से भावना फील नहीं हो कि हम अपराध किया है, अपराध की भावना नहीं हो उनके मन में, और उनको उसको आगे उनके बारे में बच्चों के हित के बारे में सोचा जाता है।
0: बिल्कुल सर।
1: जैसे ही गृह से बाहर उनको जो पुनर्वास कराया जाता है तो उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले और अच्छा आगे हो के परिवार को सहयोग प्रदान करे, इसे उनको पुनर्वास कराने की पूरी हेल्प की जाती है। इसके लिए जिला स्तर पर जिला विधिक प्राधिकरण जो ढालसा जो विभाग है कोर्ट के माध्यम से उनको कानून सहायता दी जाती है, ताकि उनका किशोर न्याय बोर्ड में वो जो कानून की सहायता में उनको हेल्प मिल जाती है।
0: बिल्कुल।
1: सरकारी वकील के माध्यम से, ताकि उनको प्राइवेट वकील का ज़्यादा खर्चा होता है तो वो मेंटेन नहीं कर पाते परिवार आर्थिक, तो उनको ये सहायता दिलाई जाती है।
0: जी सर।
1: फिर वहाँ जो होम में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाई के लिए भी विशेष सुविधा दी जाती है, कोई बच्चा पढ़ता है भी उसको मोटिवेट किया जाता है उसको, और परीक्षा के माध्यम से फॉर्म भरा उनको एग्जाम भी दिलवाए जाते हैं।
0: बिल्कुल सर। तो सर आपने जैसा कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को बाल सुधार गृह के बारे में बताया है कि वहाँ बच्चों को बड़े ही प्यार से सुधारा जाता है। हम देखते हैं कि समाज में कहीं बाल सुधार गृह को लेकर कुछ भ्रांतियाँ रहती हैं, तो आपकी बातों से हमारे श्रोता साथी ये समझ पाए हैं कि बाल सुधार गृह बच्चों के लिए कोई जेल नहीं है बल्कि उन्हें सुधारने के लिए एक कह सकते हैं कि प्रयास किया जाता है वहाँ पर। अब यहीं सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से कि जो बाल सुधार गृह है वहाँ हम देखते हैं कि जब बच्चे वहाँ से बाहर निकलते हैं तो क्या समाज में दोबारा सामान्य जीवन जीने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?
1: जी, समाज में थोड़ा सा वैसे बच्चों को गलत तरीके से देखा जाता है।
0: जी जी।
1: पर जैसे हमारे सुधार गृह से जो बाहर जाते हैं उनको पूरा शिक्षा दीक्षा दे के भेजते हैं कि आपको इस तरह से समाज में रहना है, ऐसा रहना है, इस तरह की शिक्षा लेनी है, इस तरह से आगे बढ़ना है, आर्थिक कठिनाइयों का कैसे सामना करना है, अपना जो जीवन है वो रोजगार का किस तरह से आगे बढ़ना है पूरा सीखा जाता है। तो इस हिसाब से उनको व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से सेशन सत्र आयोजन करा उनको समझा जाता है कि आगे पुनर्वास होने पर वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, उनका भावी जीवन उज्ज्वल बना सके, सिखाया जाता है कि जब वापिस वो ऐसी हरकतें नहीं करे, वापिस इस तरह से गलतियां नहीं करे और समाज की मुख्य धारा जुड़ करके अपना जीवन यापन कर सके।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अब यही मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि यदि किसी बच्चे की गलत संगत में पड़ने की आशंका अगर हो तो परिवार और समुदाय सबसे पहले क्या कदम उठाएं?
1: जी, जो बच्चे जो होते हैं वो परिवार की जो ध्यान नहीं देना बच्चों के बारे में, बच्चों का किस तरह की संगति है, किस तरह बच्चा रहते हैं, किस तरह उनकी एक्टिविटी, उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
0: जी जी।
1: क्योंकि बच्चे जो होते हैं 18 वर्ष तक के वो नासमझ ही होते हैं एक तरह से, उनको तो परिवार की भूमिका सबसे पहले आती है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा समय परिवार से गुजारता है, उसके बाद स्कूल में जाता है, स्कूल में ज्यादा समय गुजरता है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा विभाग और परिवार दोनों मिलके बच्चे की विशेष ध्यान रखने की थोड़ी आवश्यकता है और रख भी रहे, पर विशेष प्रयास भी कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से।
0: जी जी,
1: पर जितना जो होना चाहिए, आजकल सोशल मीडिया ऐसा आ गया है तो इस वजह से उनकी संगीत ऐसी होगी तो उसको सुधारने की आवश्यकता है, सबको ध्यान देने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर। तो सर, अब कार्यक्रम के माध्यम से अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप हमारे अभिभावकों, शिक्षकों और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि हर बच्चा सुरक्षित रहे, जागरूक रहे और जिम्मेदार नागरिक बन सके।
1: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परिवार और समाज और जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ऐसे जो कानून के बारे में जानकारी देवे ताकि वो गलत संगत में नहीं जावे, गलत हरकत नहीं करे, क्योंकि उनके अलग अलग जो किस कानून में क्या धारा है इस बारे में शिक्षा के प्रति एक सेशन सत्र होना चाहिए स्कूल में भी, ताकि बच्चों को जागरूक किया जाए कि ये काम, ये जो कर रहे हैं वो गलत काम है और गलत हरकतें हैं और ये कानून के दायरे में आता है, इसको इसमें आगे जाके समस्या खड़ी हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरा, उनको रोजगार परक शिक्षा दी जावे और उनको ताकि वो इसमें किस तरह आगे बढ़ना है जीवन में, वो उसके बारे में वो जीवन कर सके।
0: जी सर। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपना कीमती अमूल्य समय हमारे श्रोता साथियों को दिया। धन्यवाद सर।
1: थैंक यू।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में हमारे मेहमान श्रीमान नानूलाल जी रोथ जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना श्रोता साथियों, जैसा कि हम उनके जीवन परिचय से भी रूबरू हो पाए। तो दोस्तों, आज के इस बातचीत से ये बात महत्वपूर्ण समझने में मिलती है कि बचपन को सही दिशा देना केवल परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। किसी बच्चे से गलती हो जाना उसके पूरे जीवन का अंत नहीं होता साथियों। सही मार्गदर्शन, शिक्षा, सकारात्मक वातावरण उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने में मदद कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े थे नानूलाल जी रूथ, जो कि अध्यक्ष महोदय हैं, जिनके माध्यम से बाल सुधार गृह से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर श्रोता साथियों हम चर्चा कर पाए हैं। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी साथियों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारे मेहमान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम हमारे मेहमान से हम विदा लेना चाहेंगे। आपसे सिर्फ कार्यक्रम के अंत में दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि हर बच्चा एक नई शुरुआत का हकदार होता है, क्योंकि एक गलती उसके पूरे भविष्य की पहचान नहीं हो सकती। बच्चों को सजा से ज्यादा सही दिशा, समझ और अवसर की जरूरत होती है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस पते पर हमारा पता लिखे, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने राय सुझाव और हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम हमारे मेहमान में एक नए शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, सत्य और अहिंसा केवल विचार नहीं है बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम राह है। यदि हर व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में अपनाए तो समाज में शांति के साथ साथ विश्वास और मानवता का नया युग स्थापित हो सकता है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी आत्मदर्शन कार्यक्रम में हम हर रविवार को हाजिर हो जाते हैं गांधी जी के जीवन से रूबरू होने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: और जैसा कि मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर,
1: और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: बिल्कुल।
0: आज के रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन यानी कि सबके गांधी में, जैसा कि हम रूबरू होने जा रहे हैं गांधी जी के उपवास प्रकरण की आगे की चर्चा में। श्रोता साथियों, इस उपवास के समय गांधी जी की उम्र 78 वर्ष की थी।
1: बिल्कुल।
0: यह ध्यान रहे, कलकत्ते में तो मानो उपवास ने गांधी जी के आंगन में आकर दरवाजा खटखटाया था। कशिश, वैसे तो गांधी जी दूसरी बार नुआखली जाने के लिए कलकत्ता आए थे। वहां की परिस्थिति बिगड़ती देखकर सुरावधि आदि ने उन्हें कलकत्ते में ही रोक लिया था।
1: बिल्कुल।
0: कलकत्ते ने स्वतंत्रता दिवस कौमी एकता की अपूर्व माहौल में मनाया था। हालांकि गांधी जी ने उस दिन उपवास रखा था, एकता के ये दृश्य धोखेबाज निकलेंगे ऐसी उनको आकांक्षा थी, और इस संबंध में उन्होंने चेतावनी भी दे दी थी। सितंबर के आरंभ में कशिश फिर से हिंसा फूट पड़ी। हिंसकों के झुंड बेलिया घाट के हैदरी मिशन पर आ पहुंचे थे। वहां गांधी जी शहीद सुहरावर्दी के साथ उतरे हुए थे। इस मकान को उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। गांधी जी पर भी ईंट या लाठी फेंक कर हमला करने के प्रयास हुए थे। गांधी जी ने उसी क्षण नुआखली न जाकर कलकत्ते में ही रुकने का निर्णय लिया था।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने शाम को खाना नहीं लिया था, तभी लोगों को पता लगा था कि वे उपवास पर उतर आए हैं। इस दंगे के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में हिंदू महासभा और फॉरवर्ड ब्लॉक एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों गांधी जी के उपवास के समाचार बिजली की रफ्तार से पूरे शहर में फैल गए थे। किसी किसी ने इसकी आलोचना की, कोई कोई दुखी हुआ और कोई कोई तो ये सोचने लगा कि उनका उपवास छुड़वाने के लिए वे क्या कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस प्रकार अंजलि जी सोचने वालों को गांधी जी सलाह देते थे कि तुम मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों को शांति बनाए रखने के लिए समझाओ। ऐसा प्रयास करते हुए दो युवक सचिन मित्र और स्मृतिश बनर्जी ने मौत को गले लगा लिया। गांधी जी ने उनके परिजनों को सांत्वना देने के साथ उन्हें शांति के कार्य में यथासंभव अपनी सेवा देने का सुझाव दिया। दोस्तों, हिंदू महासभा के नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी उस समय शहर में बीमार थे। उनसे मिलने के लिए जब गांधी जी की तरफ से प्यारेलाल जब गए, तब वे तुरंत यह बात समझ गए कि स्वतंत्रता के बाद यदि हमारे देश में तत्काल दंगा होगा तो पाकिस्तान से उसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी आएगी।
0: जी जी।
1: उन्होंने उसी समय कलकत्ते के नागरिकों को शांति स्थापित करने की अपील का पत्र तैयार करके उस पर अपने हस्ताक्षर करके सौंपे। कलकत्ते के अधिकतर अंजलि जी दलों के नेताओं ने उस अपील पर हस्ताक्षर किए थे। स्थान स्थान पर लोग शांति के प्रयास में लग गए। उन दिनों गांधी जी से किसी ने कहा कि दंगा तो मवाली करते हैं। गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ये बात सच है, तब भी उन्हें मवाली बनाने में समाज जिम्मेदार है। मवाली को हम न समझा सके, तब भी हमें उनका उपयोग करने वाले तत्वों को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए।
0: जी जी।
1: इस उपवास में गांधी जी की तबीयत काफी पहले ही बिगड़ गई थी साथियों। उनकी हालत चिंतनीय थी। यह बात शहर भर में फैल गई। वातावरण में एक ही बात गूंज रही थी, हमारे लिए गांधी जी अपने प्राण जोखिम में डाल रहे हैं। दंगों में सक्रिय गुंडे जब अपने घर गए तो उनके नियमित खाना तैयार था, पर गृहिणियों ने मुंह में एक भी दाना नहीं डाला था।
0: बिल्कुल।
1: गांधी जी हमारे लिए प्राण दे रहे हैं तो हम खाना कैसे खा सकती हैं? इस प्रश्न को कईयों ने कानों से सुना और कईयों ने अपनी आंखों से पढ़ा भी, और बदलाव आया। पहले एक दो, फिर छोटी छोटी टुकड़ियों में हिंसा करने वालों ने खुद गांधी जी के सामने आकर अपनी गलतियां स्वीकार की।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, हैदरी मेंशन में गुंडों के हथियारों का तट लग गया। एक के बाद एक मोहल्ले से पूरी शांति स्थापित होने के समाचार आने लगे। नेताओं ने आकर गांधी जी से प्रार्थना करने की विनती की। गांधी जी ने कहा यह चेतावनी देकर कि ऐसी हिंसा फिर से होगी तो वे जान दे देंगे। उन्होंने अनशन तोड़ दिया। जहां दंगे भड़के थे, उन मोहल्लों में एक कौम के लोगों ने दूसरी कौम को गले लगाकर उनका मुंह मीठा किया। अंजलि जी,
0: बिल्कुल। श्रोता साथियों, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को लिखा कि एक सेनापति और एक प्रशासक के नाते मुझे कहने दें कि पंजाब में हमारी 55,000 की फौज खड़ी है और हम स्थिति को काबू में नहीं ला सकते। पूर्व में हमारी एक व्यक्ति की फौज है और उसने शांति स्थापित कर दी है। दिल्ली का तो वातावरण ही ऐसा था कि गांधी जी जैसो के प्राण घुटने लगे। शरणार्थियों ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली छोड़कर गए लोगों के घरों का भी यही हाल था। शांति स्थापित करने के लिए जाने वाले लोगों पर सांप्रदायिक संगठनों के दफ्तरों में से गोलियां छूटती थी।
1: बिल्कुल।
0: घायल होकर अस्पताल में पहुंचे लोगों पर हमला होता था। विभाजन के बाद भी जिन लोगों ने भारत न छोड़ने का निर्णय लिया था, उन मुस्लिमों का विश्वास डगमगाने लगा था। गांधी जी ने प्राय मिलने के लिए आने वाले 2-3 मौलानाओं ने उनसे कहा कि अब तो हमें इंग्लैंड की टिकट कटवा दो, हमें पाकिस्तान नहीं जाना और हिंद में हमसे रहा नहीं जाता।
1: बिल्कुल।
0: अंतिम कुछ दिनों में गांधी जी बहुत घबराते थे। वे तीव्रता से प्रार्थना करते थे। मौलानाओं को तो गांधी जी ने उलाना दे दिया, पर स्वयं सोचने लगे कि मैं सुरक्षित हुए बिना इनकी हिम्मत रखने की सलाह कैसे दे सकता हूँ। 13 तारीख को सोमवार था। उस दिन प्रार्थना सभा में गांधी जी का लिखित प्रवचन पढ़कर सुनाया गया।
1: बिल्कुल।
0: गांधी जी ने दिल्ली में पूरी शांति न होने तक अनशन की घोषणा की थी।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी के उपवास प्रकरण को लेकर ढेर सारी बातें जान रहे हैं, ये बातें हमारी आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि हमने गीत से पहले जाना कि 13 तारीख को सोमवार था और उस दिन प्रार्थना सभा में गांधी जी का लिखित प्रवचन पढ़कर सुनाया गया। गांधी जी ने कशिश दिल्ली में पूरी शांति न होने तक अनशन की घोषणा की थी।
1: बिल्कुल,
0: उपवास से पहले अनुभव की जाने वाली अकुलाहट उपवास शुरू करने के बाद फौरन खत्म हो गई। वे परम शांति का अनुभव करने लगे। वे उपवास को उपासना का माध्यम मानते थे और एक बार उपवास शुरू करने के बाद स्वयं को श्री हरि के शरण में सौंपते थे। उपासना और उपवास की जोड़ी ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे को शक्ति देते।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों इस उपवास का प्रभाव मात्र इस देश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सहित अन्य देशों पर भी पड़ा। दिल्ली के होटलों ने भोजनालय बंद रखे, कट्टर हिंदू मोहल्लों ने मुस्लिम भाई बहनों का स्वागत किया।
0: बिल्कुल,
1: जिन शरणार्थियों में से कोई कोई गांधी जी को सलाह देता कि आप राजनीति छोड़कर हिमालय चले जाओ, उनमें से लगभग 1,00,000 शरणार्थियों ने गांधी जी की सहानुभूति में खाना छोड़ दिया।
0: बिल्कुल
1: साथियों, भारत छोड़कर पाकिस्तान अधिकांश उपवास किसी न किसी धार्मिक कारण से किए गए थे। संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित प्रश्न को लेकर उपवास शायद गांधी जी ने पहली बार ही किए थे। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी कई बार उपवास विषयक अपने लंबे अनुभव के कारण स्वयं की उपवास विशेषज्ञ के रूप में पहचान कराते थे। साथियों, उनके अलग अलग उपवासों के उदाहरण देते समय गांधी जी द्वारा स्वयं अपने अनुभव के आधार पर उपवास बाबत निकाले गए निष्कर्ष संक्षेप में बताना चाहेंगे। जैसे कि उपवास अंदर की प्रेरणा से किए जाए, किसी दूसरे के उपदेश या चढ़ाने से नहीं।
0: बिल्कुल,
1: जिस व्यक्ति या समूह पर उस उपवास का सीधा असर पड़ता हो उसके साथ उपवास करने वाले का संबंध स्नेह या आत्मीयता का होना चाहिए। उपवास किसी से बदला लेने या किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए नहीं होते। मनुष्य अपने हृदय का टटोलने या आत्मशुद्धि से उपवास अवश्य कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: उपवास के समय मन शांत रहना चाहिए अंजलि जी, और उपवास करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य कम कर देने चाहिए, मानसिक तनाव भी कम कम रखना चाहिए। एक तरह से देखे साथियों तो उपवास प्रार्थना का एक प्रकार है। उपवास करने वाला उपवास को ईश्वर की गोद में बैठने के एक साधन के रूप में देखे तो प्रार्थना से उपवास को और उपवास से प्रार्थना को बल मिलता है।
0: बिल्कुल, तो कशिश इस तरीके से कार्यक्रम में आज हमने सबके गांधी कार्यक्रम में गांधी जी के उपवास प्रकरण के बारे में जाना।
1: जी हाँ,
0: अगले रविवार को हमारी श्रोता साथियों से फिर मुलाकात होगी गांधी जी के नए प्रकरण नारी के साथ में। लेकिन तब तक के लिए इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति चाहेंगे। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले मैंने आपको हमारे आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत यानी कि व्यंजन विधि के बारे में तो बता ही दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि हम घर पर बाजरे की राब कैसे बनाएंगे। तो श्रोता साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो सबसे पहले श्रोता साथियों, बाजरे का आटा हमें 3 बड़े चम्मच लेने हैं। इसके बबाद हमें छाछ लेनी है लगभग 2 कप। पानी लेना है श्रोता साथियों हमें 1 कप। नमक है वो हमें स्वाद अनुसार लेना है। साथ ही श्रोता साथियों, 1 छोटा चम्मच जीरा लेना है और 1 छोटा चम्मच घी लेना है। साथ में अजवाइन 1 छोटा चम्मच हमें लेना है। हरा धनिया थोड़ा सा हमें लेना है और साथ ही श्रोता साथियों 1 चुटकी हींग लेनी है। तो श्रोता साथियों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बाजरे की राब बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। अब यही बात आती है कि हमें इसे बनाने के लिए कौन सी विधि अपनानी है। तो श्रोता साथियों, सबसे पहले विधि की बात कर ही रहे हैं तो आपको सबसे पहले घोल तैयार करना है। सबसे पहले 1 कटोरी में बाजरे का आटा ले, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से घोल तैयार करें। ध्यान रखें श्रोता साथियों कि घोल में गुटिया न रहे। इसके बाद में हमें छाछ मिलानी है। अब इस घोल में छाछ डालकर अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। छाछ और बाजरे के आटे का मिश्रण जितना अच्छी तरह से फेंटेंगे श्रोता साथियों, राब है वो हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब एक कढ़ाई या मोटे तले के बर्तन में तैयार मिश्रण को हमें डालना है। इसे मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाना है श्रोता साथियों, ताकि नीचे चिपके नहीं और गुटिया भी न पड़े। जब राब धीरे धीरे गाढ़ी होने लगे और अच्छी तरह से पक जाए, तब इसमें स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है। अब एक छोटी कढ़ाई में हमें घी को गर्म करना है। इसमें जीरा, अजवाइन, 1 चुटकी हींग डालनी है। जीरा चटकने लगे तो इस तड़के को श्रोता साथियों हमें राब में डाल देना है। ऊपर से थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। अब तैयार है हमारी गर्मा गर्म बाजरे की राब। जी हाँ श्रोता साथियों, दादी माँ की रसोई की खासियत यही है कि घर में उपलब्ध साधारण सामग्री से हम स्वादिष्ट व्यंजन कैसे तैयार हो जाते थे। बाजरा भी हमारी पारंपरिक खाद्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, इसलिए आज की पीढ़ी को भी यह पारंपरिक व्यंजनों और अनाजों से परिचित कराना जरूरी है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से ये वाली व्यंजन विधि तो मेरी आपसे पूरी हुई। आगे मैं आपको एक और व्यंजन विधि के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुख करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले हमने एक स्वास्थ्य प्रद व्यंजन विधि के बारे में जाना, जो कि थी श्रोता साथियों बाजरे की राब। अब यही श्रोता साथियों, एक और स्वादिष्ट व्यंजन विधि के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो है श्रोता साथियों, भुट्टे की चाट। कहा जाता है श्रोता साथियों कि मौसम का असली मजा तभी आता है जब हमारी थाली में भी उस मौसम की खुशबू और स्वाद नजर आए। बारिश के मौसम में खेतों में लहराते हरे भरे पौधे और बाजार से सजी ताजे भुट्टे मन को अपने आप खुश कर देते हैं। भुट्टा श्रोता साथियों सिर्फ बारिश के मौसम का स्वाद नहीं है, बल्कि हमारे गांव और खेत खलियान की यादों से भी जुड़ा हुआ है। कभी चूल्हे पर भुना हुआ भुट्टा, तो कभी श्रोता साथियों उबाल कर या अलग अलग मसालों के साथ बनाया गया भुट्टा। हर रूप में इसका स्वाद खास लगता है। आज भी श्रोता साथियों, दादी माँ की रसोई में हम भुट्टे से बनाएंगे एक ऐसी चटनी और स्वादिष्ट चीज जिसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज की हमारी श्रोता साथियों रेसिपी है भुट्टे की चाट, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो चलिए श्रोता साथियों, बिना देर किए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि। श्रोता साथियों, भुट्टे की चाट एक स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाला व्यंजन है। इसमें उबले हुए भुट्टे के दानों को प्याज, टमाटर, नींबू और हल्के मसालों के साथ मिलाकर चटपटा स्वाद दिया जाता है। तो श्रोता साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो श्रोता साथियों, सबसे पहले हमें ताजे दो भुट्टे लेने हैं। प्याज लेना है एक बारीक कटा हुआ, टमाटर लेना है एक बारीक कटा हुआ, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेनी है, दो बड़े चम्मच हरे धनिया लेना है, एक नींबू का रस लेना है श्रोता साथियों, साथ ही भुना हुआ जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच लेना है, चाट मसाला एक छोटा चम्मच लेना है, काला नमक है वो स्वाद अनुसार हमें लेना है, सामान्य नमक है वो भी हमें स्वाद अनुसार ही लेना है, लाल मिर्च पाउडर थोड़ी मात्रा में, उबले चने लेने हैं श्रोता साथियों एक छोटा कप, साथ ही जीरा एक छोटा बारीक कटा हुआ। ये तो श्रोता साथियों मैंने आपको बताया इसे बनाने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। नहीं, अगर बात करें कि भुट्टे की चाट बनाने की विधि क्या है, तो श्रोता साथियों सबसे पहले हमें भुट्टे को तैयार करना है। सबसे पहले भुट्टे के ऊपर लगे छिलके और रेशे अच्छी तरह से निकाल कर भुट्टे को साफ पानी में धो लेना है। अब इन्हें उबाल ले, आप चाहो तो भुट्टे को भाप में भी पका सकते हैं। जब भुट्टे अच्छी तरह से पक जाए तो उसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। श्रोता साथियों, अब चाकू की सहायता से भुट्टे के दानों को हमें सावधानी से अलग कर देना है। दाने एक कटोरी में निकाल ले। अगर आप चाहो श्रोता साथियों, तो बाजार में मिलने वाला साफ किए हुए कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब श्रोता साथियों, इसमें हमें सब्जियां मिलानी है। अब एक बड़े बर्तन में भुने हुए जो भुट्टे के दाने थे वो हमें लेने हैं। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया है वो हमें डाल देना है। अगर श्रोता साथियों आपको पसंद हो तो इसमें बारीक कटा हुआ खीरा और उबले हुए चने भी आप मिला सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च हमें डाल देनी है। सभी सामग्री को अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। अब श्रोता साथियों, बात आती है नींबू की। अब इसमें आखिर में श्रोता साथियों, इसमें ताजा नींबू का रस हमें डालना है। एक बार फिर से सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला ले। श्रोता साथियों, लीजिए तैयार ही हमारे चटपटी और स्वादिष्ट भुट्टे की चाट। तो श्रोता साथियों, ये तो हमने बात की कि भुट्टे की चाट बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और कौन सी विधि को अपनाकर हम बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। तो श्रोता साथियों, यही कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको भुट्टे की चाट के फायदे बताना चाहूंगी। श्रोता साथियों, भुट्टा एक अनाज है और इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कुछ विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। इसके साथ प्याज, टमाटर, नींबू और हरा धनिया जैसी चीजें मिलाने से हम देखते हैं कि चाट की पौष्टिकता और स्वाद दोनों बढ़ते हैं। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि इसमें फाइबर का स्रोत अच्छा है। श्रोता साथियों, भुट्टे आहार में फाइबर पाया जाता है। फाइबर है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए उपयोगी होता है और संतुलित भोजन का हिस्सा भी हो सकता है। ऊर्जा देने वाला भोजन है श्रोता साथियों। मैंने कहा था कि जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि श्रोता साथियों हमारे शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं, इसीलिए श्रोता साथियों इसे संतुलित आहार के हिस्से के रूप में भी लिया जा सकता है। सब्जियों से बढ़ती है पौष्टिकता। श्रोता साथियों, भुट्टे की चाट में हमने टमाटर, नींबू, प्याज, खीरा, हरी सब्जियां
जैसी चीजें थी जो शामिल की थी। इसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और फाइबर होते हैं जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। यही अगर श्रोता साथियों बात करें नींबू की, तो श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि नींबू में विटामिन सी होता है। चाट में डाला गया नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। नींबू का रस ही वो चाट को और स्वादिष्ट बना देता है। साथ ही श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगी, स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाला नाश्ता भी है यह। भुट्टे की चाट बनाने में ज्यादा समय और बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती है। इसे घर पर आसानी से हम बना सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। साथियों कहना चाहूंगी कि हमारी पारंपरिक रसोई की खुशबू यही है कि इसमें स्वाद के साथ साथ मौसम का ध्यान भी हम रखें। बारिश के दिनों में मिलने वाला भुट्टा हो या सर्दियों में मिलने वाला बाजरा और तिल, हमारे पूर्वज मौसम के अनुसार उपलब्ध खाद्य पदार्थों को अपने भोजन का हिस्सा बनाते रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमारी थाली में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के अनाज, सब्जियां, फल और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी शामिल हों। श्रोता साथियों अगर आपके घर में भी आज भुट्टा आया है तो उसे सिर्फ उबाल कर या भून कर खाने के बजाय एक बार चटपटी भुट्टे की चाट जरूर बना के देखिए। प्याज, टमाटर, हरा धनिया, नींबू और हल्के मसालों के साथ भुट्टे का स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। और हाँ श्रोता साथियों, चाट बनाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान हमें रखना है। भुट्टे और सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल हमें करना है और तैयार चाट को लंबे समय तक बाहर रख कर खाने से बचें। तो श्रोता साथियों आज दादी माँ की रसोई में हमने बनाई स्वाद और सेहत से भरपूर चटपटी भुट्टे की चाट। कम सामग्री, आसान विधि और स्वाद ऐसा कि हर किसी को पसंद आए। तो श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जाना कि हम बाजरे की राब कैसे बना सकते हैं, इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और इसे बनाने की विधि क्या है, और साथ ही श्रोता साथियों इसके फायदों को लेकर भी हमने बात की थी। और हमने जाना कि भुट्टे का जो चाट है वो हम घर पर कैसे बना सकते हैं आसानी से, इसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए होगी और आसान विधि क्या है और इसके लाभ क्या है। ढेर सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जानी और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो श्रोता साथियों में जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम दादी माँ की रसोई अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हूँ कि आज के कार्यक्रम में मेरी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, जो व्यंजन विधि मैंने आपको बताई, वो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई व्यंजन विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

वागड़ रेडियो 90.8 FM प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है। चले वतन इसी से है, यही हमारा अभिमान है, ये हमारा संविधान है। उद्देशिका का मंत्र है, लोकतंत्र ये गणतंत्र है, न्याय की ये नीति है, संपन्नता की रीति है, अखंडता इसी से है, यही निरपेक्षता का मान है और यही हमारा संविधान है।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में पिछले रविवार ये हमारे श्रोता साथियों से बातचीत रही थी महात्मा गांधी और भारतीय संविधान में। हमने जाना था कि कैसी व्यवस्था चाहते थे गांधी जी और संसदीय व्यवस्था गांधी जी की दृष्टि में क्या थी। इसी के साथ हमने जाना गांधी और मौलिक अधिकार के बारे में। हमने इसी के साथ एक और चीज जानी थी कि गांधी जी की दृष्टि में कर्तव्य क्या है। आज रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत रहने वाली है कि कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी।
1: जी हाँ, जैसा कि अंजलि, कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी, इसको लेकर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने जिस संविधान का सपना बुना था उसके बारे में उनका सोचना था कि एक इंसान दूसरे इंसान में अपना जीवन प्रतिबिंब देखेगा। ऐसा करते हुए वह किसी का अहित नहीं चाहेगा। उनका मानना था कि जब वह अपना जीवन दूसरे व्यक्ति या समुदाय के साथ साझा करेगा तब वह सभ्यता के सुखद मुकाम पर होगा। इस प्रकार गांधी जी का संविधान मनुष्य के परस्पर रिश्तों पर जोर देता है, वह सामुदायिक साझेदारी के भी पैरोकार थे। गांधी जी का संविधान साझा सोच, साझा हित और संसाधनों की साझेदारी के साथ आगे बढ़ने की वकालत करता है।
0: यही बात करें जागृति जी सभ्यता और नीति की, तो गांधी जी ने लिखा कि लोग अपने खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्हें एहसास ही नहीं होता कि जिसे वे सभ्यता का विकास कहते हैं वह वास्तव में रोग है।
1: जी हाँ,
0: उन्होंने लिखा कि लोग बाहरी दुनिया की खोजों और शरीर के सुख में सार्थकता और पुरुषार्थ मानते हैं। 100 साल पहले यूरोप के लोग जैसे घरों में रहते थे उनसे ज्यादा अच्छे घरों में आज रहते हैं। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे और भालों का इस्तेमाल करते थे, अब वे पतलून पहनते हैं और भालों के बदले 5 गोलियां छोड़ने वाली बंदूक का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी हाँ,
0: पहले मामूली हल से मेहनत करके जमीन जोतते थे, उनकी जगह भाप के यंत्रों से हल चलाकर एक आदमी बहुत सारी जमीन जोत लेता है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारा पैसा कमा लेता है। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग बैलगाड़ी से 12 कोस की मंजिल तय करते थे जागृति जी, अब रेलगाड़ी के 400 कोस की मंजिल तय करते हैं। यह सभ्यता की चोटी मानी गई है। लोग सोचते हैं कि हवाई जहाज से चंद घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकेंगे, हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं रहेगी, हाथ पैरों का काम नहीं पड़ेगा, सारा काम यंत्रों से ही हो जाएगा।
1: जी हाँ,
0: आज तोप के एक गोले से हजारों जाने चली जा सकती हैं। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग खुली हवा में जितना ठीक लगे उतना काम स्वतंत्रता से करते थे।
1: बिल्कुल,
0: अब हजारों आदमी कारखानों में या खानों में इकट्ठा होकर काम करते हैं, उनकी हालत जानवर से भी बदतर है।
1: जी हाँ,
0: पहले लोगों को मार कर पीट कर गुलाम बनाया जाता था, अब पैसों और भोग का लालच देकर गुलाम बनाया जाता है।
1: जी हाँ,
0: सभ्यता के इन अनुभवों में नीति या धर्म की बात ही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि नीति से हटकर हासिल किया गया आविष्कार संकट को ही जन्म देगा।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। जैसे कि आपने बताया सभ्यता और नीति के बारे में, यही हम जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि गांधी जी राष्ट्र की सुरक्षा पर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे, वह यह भी नहीं चाहते थे कि कोई अन्य देश भारत पर कब्जा करे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सत्य, अहिंसा और अभय के मूल्य हो सकते हैं। यह बात गांधी जी के सपनों के संविधान में दिखाई देती है।
0: जी जी,
1: विदेशी हमलों में सुरक्षा के लिए भी विकेंद्रीकरण एक अनिवार्य रणनीति है। साथ ही स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान में लिखा गया है कि जब बड़े बड़े कारखाने और उद्योग एक ही जगह केंद्रित हो जाते हैं तो उन्हें चंद आधुनिक हथियारों से निशाना बनाकर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को आसानी से तोड़ा जा सकता है।
0: जी जी,
1: परंतु हम देखते हैं यदि उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो तो उन्हें कोई भी आधुनिक हथियार एक साथ नहीं मिटा सकते। व्यवसाय उद्योगों का केंद्रीकरण देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करता है। उत्पादन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था से युद्ध जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी देश को अपनी बुनियादी जरूरत के सामान के अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें वैश्विक शांति की तो हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान में लिखा है कि यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में हर युद्ध का बुनियादी कारण आर्थिक शोषण और विश्व बाजार पर नियंत्रण पाने का भयंकर लालच है। अब युद्धों में विनाश का सामना करने के बाद ये बड़े देश अपने यहाँ के उत्पादों का निर्यात बढ़ाकर अपनी विलासिता को भोगते रहना चाहते हैं। उपनिवेश बनाए रखने की यह प्रवृत्ति दुनिया में दुर्भावना और हिंसा को बरकरार रखेगी। जो देश विश्व शांति बनाने की मंशा रखते हैं उन्हें अपने या स्थानीय और विकेंद्रीकृत उद्योग स्थापित करने चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आंतरिक रूप से समान वितरण की व्यवस्था स्थापित किए बिना कोई भी देश विश्व शांति की कल्पना नहीं कर सकता। यदि उपनिवेशवाद और आर्थिक नियंत्रण की भावनाओं को नियंत्रित किया जा सके तो विश्व शांति स्थापित हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि हम कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में जान पाए कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी, उसी के साथ हमने जाना सभ्यता और नीति के बारे में, साथ ही हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जाना और वैश्विक शांति के बारे में। आगे हम जानेंगे रेल परिवहन की मशीनों के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे रेल परिवहन की मशीनों के बारे में, तो अंजलि परिवहन पर गांधी जी के विचार बहुत बहस तलब है। वह हिंद स्वराज में लिखते हैं, रेल से अकाल बड़े हैं क्योंकि रेलगाड़ी की सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहाँ महंगाई हो वहाँ अनाज खींच जाता है, लोग लापरवाह बनते हैं और उससे अकाल का दुख बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि रेल है तो आज हिंदुस्तान में एक राष्ट्र का जोश देखने में आता है। यह आपकी भूल ही है। आपको अंग्रेजी ने सिखाया है कि आप एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों बरस लगेंगे। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब हम एक राष्ट्र थे, हमारे विचार एक थे, तभी तो अंग्रेजों ने यहाँ एक राज्य कायम किया। भेद तो हमारे बीच बाद में उन्होंने पैदा किए। एक राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं थे, लेकिन हमारे मुख्य लोग पैदल या बैलगाड़ी से हिंदुस्तान का सफर करते थे। वे एक दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। लोग देशांतरण करते थे, वे घर में या अपने राज्य की सीमा में ही दिन भी बिता सकते थे, पर उन्होंने अलग अलग स्थानों की यात्रा करके एकता का विचार स्थापित किया।
1: जी, यही बात करें जागृति जी, तो वास्तव में भारत में रेलों के जाल की बुनावट इस विश्लेषण के आधार पर की गई कि देश के किन हिस्सों में लोहा, कोयला, नील या इमारती लकड़ी की प्रचुर उपलब्धता है। प्राथमिक रूप से उन स्थानों तक पहुंचने और वहां से प्राकृतिक संसाधनों को ब्रिटेन ले जाने के लिए रेल का जाल बुना गया। सवाल यह है कि जब हम अपनी सुविधा के लिए कोई भी आविष्कार करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तब क्या उसके साथ जुड़े हुए नैतिक और अनैतिक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं या नहीं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ उद्योग और रोजगार को लेकर हम बात करें तो विकास हमारे दौर का सबसे चर्चित शब्द है। हर नागरिक विकास चाहता है। आम नागरिकों के लिए विकास का अर्थ है बेहतर, सुखमय, शांतिपूर्ण और भयमुक्त जीवन, परंतु नीति निर्माताओं के लिए विकास का अर्थ है संसाधनों पर एकाधिकार, पूंजी का केंद्रीकरण और समाज को सत्ता का उपनिवेश बना देना।
1: जी बिल्कुल।
0: साथियों, गांधी जी मानते थे बड़े पैमाने पर होने वाला उत्पादन ही दुनिया की मौजूदा संकट में स्थिति के लिए जिम्मेदार है। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का अनिवार्य परिणाम ये होगा कि जो जो प्रतिस्पर्धा और बाजार की समस्याएं बड़ी होंगी, त्यों त्यों गांवों का शोषण भी होगा।
1: जी,
0: इसीलिए हमें सारी शक्ति इसी प्रयत्न में लगानी चाहिए कि गांव स्वावलंबी बने और वस्तुओं का निर्माण और उत्पादन अपने उपयोग के लिए करें। यदि उत्पादन की ये पद्धति स्वीकार कर ली जाए तो फिर गांव वाले ऐसे आधुनिक यंत्रों और औजारों का, जिन्हें वे बना सकते हो और जिनका उपयोग उन्हें आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त रहता हो, उसका उपयोग खुशी से करें। उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती, अलबत्ता उनका उपयोग दूसरों के शोषण के लिए नहीं होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यही बात करें जागृति जी न्याय और सांप्रदायिकता की, तो श्रोता साथियों, गांधी जी हिंद स्वराज में लिखते हैं, यह माना जाता है कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों के आने से यह एक राष्ट्र नहीं रहा। हिंदुस्तान में चाहे जिस धर्म का आदमी रह सकता है, इससे राष्ट्र मिटने वाला नहीं है। दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का अर्थ एक धर्म नहीं किया गया है।
0: जी हाँ,
1: हिंदुस्तान में तो ऐसा था ही नहीं। हिंदू और मुसलमान के झगड़े तो अंग्रेजों ने शुरू करवाए। मियां और महादेव की नहीं बनती जैसी कहावतें हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसी कहावतें तो शैवों और वैष्णवों में भी चलती है।
0: बिल्कुल।
1: पर इससे कोई यह नहीं कहेगा कि वे एक राष्ट्र नहीं है। वेद धर्मियों और जैनों के बीच बहुत फर्क माना जाता है, फिर भी इससे वे अलग राष्ट्र नहीं बन जाता। चूंकि हम गुलाम बन गए, इसलिए अपने झगड़े तीसरे के पास ले गए। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ेगा त्यों त्यों हम समझते जाएंगे कि हमें पसंद न आने वाला धर्म दूसरा आदमी पालता हो तो भी उसे बेर भाव रखना हमारे लिए ठीक नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: हम उस पर जबरदस्ती नहीं करें, सब अपने अपने धर्म का स्वरूप समझकर उससे चिपके रहें और शास्त्रियों और मूल्यों को बीच में न आने दें, और झगड़े का मुंह हमेशा के लिए बंद रहेगा।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ गांधी जी कहते थे कि मेरी राय है कि वकीलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया है, हिंदू मुसलमान के झगड़े बढ़ाए हैं और अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ मजबूत किया है। साथियों, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो तटस्थ आदमी उनसे कहेगा कि आप गई बीती को भूल जाएं, इसमें दोनों का कसूर रहा होगा, अब दोनों मिलकर रहिए। लेकिन वकील के पास जाते हैं तो वकील का फर्ज होता है कि वह मुवक्किल की ओर से जोर लगाए। मुवक्किल के ख्याल में भी न हो ऐसी दलीलें मुवक्किल की ओर से ढूंढना वकील का काम है। वकीलों से बड़े से बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि अंग्रेजों का जुआ हमारी गर्दन पर मजबूती से जम गया। आप सोचिए, क्या आप मानते हैं कि अंग्रेजी अदालतें यहाँ नहीं होती

0: तो वे हमारे देश में राज कर सकते थे। ये अदालतें लोगों के भले के लिए नहीं है, जिन्हें अपनी सत्ता कायम रखनी है वे अदालतों के जरिए लोगों को वश में रखते हैं। लोग अगर खुद अपने झगड़े निपटा लें तो तीसरा आदमी उन पर अपनी सत्ता नहीं जमा सकता।
1: जी हाँ,
0: सचमुच जब लोग खुद मारपीट करके या रिश्तेदारों को पंच बनाकर अपना झगड़ा निपटा लेते थे तब वे बहादुर थे। अदालतें आई और वे कायर बन गए, लोग आपस में लड़कर झगड़े मिटाए। यहाँ यह जंगली माना जाता था, अब तीसरा आदमी झगड़ा मिटाता है, ये क्या कम जंगलीपन है? हकीकत तो ये दिखाती है कि अंग्रेजों ने अदालतों के जरिए हम पर अंकुश लगाया है और अगर हम वकील न बने तो ये अदालतें चल ही नहीं पाती।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी, उसे में हम ढेर सारी बातों को जान पाए। हमने रेल परिवहन की मशीनें, उद्योग और रोजगार और न्याय और सांप्रदायिकता के बारे में भी जाना।
0: जी हाँ,
1: अगले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत रहेगी कि गांधी जी के सपनों की राज व्यवस्था क्या थी।
2: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी आज की संध्याकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना से। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, जिसमें आप जानेंगे महान व्यक्तित्व के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया को एक नई दिशा दी है। इसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 5:30 पर। दोस्तों, इसी के बाद अगला कार्यक्रम होगा प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सभी सुन पाएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में ठीक शाम 6:00। दोस्तों, फिर हमारा अगला कार्यक्रम होगा बच्चों के लिए शिक्षाप्रद व प्रेरणादायी कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, जिसे आप सभी सुन पाएंगे

ठीक शाम 6:30 पर। साथियों, इसी क्रम में हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारे मेहमान से, जिसे आप सभी सुनेंगे ठीक शाम 7:00। इसी के बाद दोस्तों आपको रूबरू करवाएंगे गांधी जी के विचारों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हिंद स्वराज, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 7:30 पर। साथियों, फिर हम रुख करेंगे हम और हमारा संविधान कार्यक्रम की ओर, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 8:00। साथियों, इसी के बाद हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, जिसमें हम जानेंगे कुछ स्वास्थ्यप्रद व्यंजनों की विधि के बारे में। इसी बीच कुछ फिल्मी नगमे सुनवाएंगे आपको मनोरंजन के लिए। दोस्तों, इन नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी और दर्द भरी गजलों को ठीक रात्रि 9 से रात्रि 10 बजे तक। तो श्रोताओ, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सभा की कार्यक्रम आराधना से।

0: आंकड़ों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
2: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
0: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है, ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: एवो केवाय, जैविरे एक बैरू मजबूत बने हैं, तैविरे पूरो परिवार मजबूत बने हैं।
0: पर मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती, आवे है अधिकार थकी, सुरक्षा थकी अने आपड़े अस्तित्व नी पहचान थकी।
6: जमीनी पैसा माते बैरा नो नाम एने हपना नो पहलू पगतियो है।
0: इने मले है आत्मविश्वास, रुपया नी सुरक्षा अने आपड़ा फैसला खुद लेवानी ताकत।
6: तो आओ बनो आजे मलीने आवाज उठावा, એટલે હંગરી સૂર્યે, હંગરી બુને, હંગરી માય આપણા હકને જમી માતે ગર્વ થકી ઉભી થઈ શકે।
0: બોનને અધિકાર, કેમ કે અધિકારસ અસલી તાકત હે।
1: વાગડ રેડિયો એવં વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મે પ્રસારિત।

साथियों, आजादी हमें विरासत में नहीं मिली, इसे लाखों वीरों ने अपने त्याग, संघर्ष और बलिदान से अर्जित किया है। जो राष्ट्र अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता है, वही भविष्य की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना भी करता है।

0: और आज का भारत को लिखा है। श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को स्वतंत्र कराया, यदि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पा रहे हैं और लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, तो जागृति जी, यह उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है।
1: बिल्कुल,
0: स्वतंत्रता केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के साहस, धैर्य और अटूट विश्वास की कहानी है। आज का भारत उन्हीं सपनों की नींव पर खड़ा है जिन्हें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून पसीने से सींचा था।
2: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, आजादी केवल एक शब्द नहीं बल्कि उन अनगिनत सपनों और संघर्षों और बलिदानों का परिणाम है। श्रोताओं, जब हम आज खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र होकर सांस लेते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, साथ ही अपने भविष्य के सपने भी देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुई है।
0: बिल्कुल,
2: इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, त्याग, साहस, धैर्य और देशभक्ति छिपी हुई होती है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ महान नेताओं की कहानी नहीं, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने किसी न किसी रूप में आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। किसी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया, किसी ने क्रांतिकारी विचारों से युवाओं में चेतना जगाई, किसी ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से संघर्ष किया, तो किसी ने अपने लेखन, शिक्षा, संगठन और सामाजिक जागरण के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए तैयार किया। भारत सरकार के स्रोत भी स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना आजाद और अनेक अन्य नेताओं, सेनानियों की भूमिकाओं को रेखांकित करते हैं।
0: बिल्कुल चक्रवर्ति जी, भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहा।
1: बिल्कुल,
0: इस दौरान श्रोता साथियों, देश के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसानों पर भारी कर लगाया गया, कुटीर उद्योग नष्ट किए गए, भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया और स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया। लेकिन जागृति जी, भारत की धरती ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। किसी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया, किसी ने क्रांति का रास्ता चुना, तो किसी ने कलम और विचारों से लोगों को जागरूक किया। सभी का लक्ष्य एक ही था, स्वतंत्रता पाना।
1: बिल्कुल,
0: किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता हो तब हर कठिनाई छोटी लगने लगती है, क्योंकि भारत की आजादी किसी एक व्यक्ति या एक आंदोलन की देन नहीं है, यह लाखों ज्ञात अज्ञात वीरों के त्याग का परिणाम है।
2: बिल्कुल अंजलि, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा थी। 1857 का विद्रोह इस संघर्ष के महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक था।
0: बिल्कुल,
2: श्रोताओ, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहुत सारे अन्य वीरों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध साहस का परिचय दिया था। हम देखते हैं अंजलि कि समय के साथ स्वतंत्रता की चेतना देश के अलग अलग हिस्सों में फैलती गई। लोगों ने समझना शुरू किया कि विदेशी शासन से मुक्ति केवल राजनीतिक आवश्यकता नहीं बल्कि आत्मसम्मान का भी प्रश्न है। बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन ने संगठित रूप लिया। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को जन आंदोलन का प्रभावी माध्यम बनाया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ने देश के सामान्य नागरिकों को भी स्वतंत्रता के संघर्ष से जोड़ दिया था। और दूसरी ओर हम बात करें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद की, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारियों ने युवाओं में साहस, देश प्रेम और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की भावनाओं को मजबूत किया था।
0: बिल्कुल जागृति जी, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का आह्वान करके लाखों भारतीयों में नई ऊर्जा का संचार किया।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और आत्मसम्मान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखा दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए महिलाओं का योगदान भी पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसके अलावा हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके नाम इतिहास की पुस्तकों में कम मिलते हैं, लेकिन उनके त्याग के बिना आजादी का सपना पूरा नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल,
0: किसानों, मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थियों और आदिवासी समुदाय ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
2: जी हाँ अंजलि, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सबसे बड़ा संदेश यही था कि सत्य, अहिंसा और आत्मबल। गांधी जी का मानना था श्रोताओं कि अन्याय का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए मनुष्य को अपने भीतर नैतिक शक्ति विकसित करनी होगी। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी चरखा और आत्मनिर्भरता को स्वतंत्रता के संघर्ष से जोड़ा। उनके नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलनों ने आम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। किसान,

0: मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं और समाज के कई वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने। हम कह सकते हैं कि गांधी जी का योगदान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, वे सामाजिक सुधार, स्वच्छता, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता को भी स्वतंत्र भारत के लिए आवश्यक मानते थे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हम जान रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान क्या रहा और आज का भारत किस तरीके से स्वतंत्र है। आगे भी निरंतर इस विषय पर श्रोता साथियों से बातें बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य योगदान किस तरीके से रहा, यहीं श्रोता साथियों, स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है, इसका अर्थ है अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को समझना, कानून का सम्मान करना, समाज में भाईचारा बनाए रखना और देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभाना। आज हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन हमें गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव, पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यही जागृति जी आज की सच्ची देशभक्ति है। देश केवल सीमाओं से नहीं बल्कि अपने जागरूक नागरिकों से महान बनता है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों की हम बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को देखे तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से ऊपर उन्होंने देश को रखा था। उन्होंने हमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दिलाई बल्कि नागरिक जिम्मेदारी का अर्थ भी समझाया। आज हमारे पास शिक्षा के अवसर है, तकनीक है, संचार के साधन है और विकास के बहुत सारे रास्ते हैं। इसलिए आज देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। अगर स्वतंत्रता सेनानियों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष किया तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अशिक्षा, भेदभाव, भ्रष्टाचार, जैसा कि अभी आपने बताया था, हिंसा, अंधविश्वास, पर्यावरण प्रदूषण और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं के विरुद्ध जागरूकता पैदा करें।
0: बिल्कुल जागृति जी, 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी प्राप्त की, लेकिन उसके बाद देश के सामने एक नई चुनौती थी, एक ऐसे भारत का निर्माण जहां हर नागरिक को सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर मिल सके।
1: बिल्कुल,
0: आज जब हम अपने देश की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह प्रगति केवल सरकारों की नहीं बल्कि देश के करोड़ों मेहनतकश नागरिकों, किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, सैनिकों, डॉक्टरों, महिलाओं और युवाओं के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आज शिक्षा गांव-गांव तक पहुंच रही है, बेटियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। श्रोता साथियों, डिजिटल तकनीक के माध्यम से सीखने के नए अवसर भी बढ़े हैं, लेकिन अभी भी जागृति जी यह सुनिश्चित करना होगा हम सभी को कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे, क्योंकि शिक्षित समाज ही सशक्त समाज बनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक उसकी युवा आबादी है। आज की युवा केवल भविष्य के नागरिक नहीं बल्कि वर्तमान के निर्माता भी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों से तीन बड़ी बातें जरूर सीखनी चाहिए, जैसे कि पहली है अंजलि, सपना देखना। स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय स्वतंत्र भारत का सपना देखा जब परिस्थितियां बहुत कठिन थी। आज के युवा भी बड़े लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। दूसरी है अनुशासन। बड़ा परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं आता, उसके लिए निरंतर प्रयास और अनुशासन बहुत जरूरी होता है। और तीसरी आती है देश के प्रति जिम्मेदारी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये कहना चाह रहे हैं कि देशभक्ति केवल नारे लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी।
1: अपने काम को ईमानदारी से करना भी देशभक्ति है। एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है अंजलि, शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, किसान मेहनत से खेती करता है, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाता है और नागरिक कानूनों का सम्मान करता है, ये सभी राष्ट्र निर्माण के कार्य है। स्वतंत्रता हमें अधिकार देती है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें अपने संविधान का सम्मान करना होगा, दूसरों के अधिकारों और विचारों का भी सम्मान करना होगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी होगी, पर्यावरण को बचाना होगा, समाज में भेदभाव कम करने के लिए प्रयास भी करने होंगे। हमें सोशल मीडिया के युग में भी जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। किसी भी सूचना को बिना जांचे आगे बढ़ाने के बजाय उसकी सत्यता समझनी होगी। आज देश की सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है चली, बल्कि साइबर सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और सूचना की विश्वसनीयता भी आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें केवल आजाद भारत ही नहीं दिया है बल्कि एक ऐसी सोच भी दी है जिसमें साहस, त्याग, एकता और देश प्रेम सबसे ऊपर है। उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सोचा। उनका एक ही सपना था, ऐसा भारत जहां हर नागरिक सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। आज हम उनके सपनों के भारत में जी रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस स्वतंत्रता का सम्मान करें और अपने अधिकारों के साथ साथ, जैसा कि आपने भी बताया, कि अपने कर्तव्यों का हमें पूरी निष्ठा से पालन करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम अपने गांव, घर, विद्यालय, कार्यस्थल, समाज में ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी का परिचय देंगी तो यही हमारे स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वतंत्रता केवल इतिहास की तारीख नहीं, यह हर दिन अपने देश, समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प है। आजादी का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि हम अपने देश को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान हमारा इतिहास है और उनका आदर्श हमारा भविष्य। इसलिए हम सभी को मिलकर ऐसा भारत बनाना है जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व कर सके।
1: बिल्कुल अंजलि, हमें ऐसा भारत बनाना है जहां शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, जहां युवा अपने सपनों को पूरा कर सके, जहां महिलाएं सम्मान और समान अवसर के साथ आगे बढ़े, जहां किसान समृद्ध हो, गांव आत्मनिर्भर हो, पर्यावरण सुरक्षित हो और समाज में एकता बनी रहे। श्रोताओं, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजाद भारत दिया है। अब इस आजाद भारत को समृद्ध, शिक्षित, संवेदनशील, स्वच्छ और मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक रुपया से गीत के साथ में।

0: की कसम।
1: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक महान पुरुष के जीवन परिचय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
2: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक और शिक्षा प्रद कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ और इस कहानी का शीर्षक है श्रोता साथियों, माँ के बाद भी रहे मायका। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हम सभी जानते हैं कि माँ का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। अगर माँ नहीं होती है तो हमारा जीवन ही पूरा सुना सुना हो जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे कि माँ के बाद भी किस तरह हमारा मायका बना रहे इस कहानी को। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी का शीर्षक है माँ के बाद भी रहे मायका। जी हाँ साथियों, जरा सोचिए एक बेटी के लिए मायका क्या होता है। मायका सिर्फ एक घर नहीं होता दोस्तों, वो एक एहसास होता है, एक सुकून होता है जहाँ बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन उसकी पहचान हमेशा घर की बेटी ही रहती है। लेकिन कई बार जिंदगी ऐसा मोड़ लेती है दोस्तों जब माँ इस दुनिया से चली जाती है और तभी मन में एक सवाल उठता है, क्या माँ के बाद भी मायका रहता है। आज की कहानी इसी सवाल का जवाब है। दोस्तों कहानी शुरू होती है इस तरह से, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक घर था, मिट्टी का आंगन, तुलसी का चोरा और दरवाजे पर लटकती घंटी। उस घर की रौनक थी माँ सावित्री देवी, उनकी एक बेटी थी रीमा और एक बेटा था विक्रम। रीमा बचपन से ही माँ की सबसे लाडली थी। माँ उसके बाल बनाती, स्कूल भेजती और रात को कहानी सुनाकर सुलाती। जब रीमा की शादी हुई तो विदाई के समय माँ ने उसे गले लगाकर कहा था, बेटी ये घर तुम्हारा था है और हमेशा रहेगा। जब भी मन भारी हो मायके का दरवाजा हमेशा खुला मिलेगा। साथियों उस दिन रीमा बहुत रोई थी लेकिन माँ के शब्द उसके दिल में बस गए थे। साल गुजरते गए, रीमा अपने ससुराल में खुश थी लेकिन हर त्योहार हर खुशी में वो अपने मायके को जरूर याद करती थी। माँ के हाथ की रोटियां, माँ की डांट, माँ का प्यार सब कुछ उसे फिर से बच्चा बना देता था। लेकिन एक दिन वो खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया और वो खबर थी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रीमा जब मायके पहुंची तो वही घर, वही आंगन, वही दीवारें थी लेकिन माँ की आवाज नहीं थी। उसने आंगन में कदम रखा तो लगा जैसे घर की धड़कन ही रुक गई हो। वो माँ के कमरे में गई, माँ की पुरानी साड़ी अलमारी में रखी थी। रीमा ने साड़ी को छुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, माँ अब मैं किससे कहूंगी कि मुझे मायके आना है। समय बीता, रीमा कई महीनों तक मायके नहीं आई। उसके मन में डर था श्रोता साथियों कि क्या अब भी ये घर मेरा मायका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के बाद ये रिश्ते भी खत्म हो गए हो। एक दिन उसका भाई विक्रम अचानक उसके घर आया। वो बोला, दीदी आप इतने दिनों से मायके क्यों नहीं आई। रीमा चुप रही, फिर धीरे से बोली, विक्रम माँ के बिना मायका कैसा। विक्रम मुस्कुराया और उसकी बात सुनकर बोला, दीदी अगर माँ ही मायका थी तो क्या हम कुछ भी नहीं है। रीमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। विक्रम बोला, दीदी माँ ने हमें सिर्फ जन्म नहीं दिया, उन्होंने हमें रिश्तों की जिम्मेदारी भी सिखाई है। अगर माँ के बाद मायका खत्म हो जाए तो इसका मतलब हम माँ की सीख भूल गए। फिर उसने रीमा का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी मायका सिर्फ माँ का कमरा नहीं होता, मायका वो घर होता है जहाँ बेटी का हक कभी खत्म नहीं होता। रीमा की आंखें भर आई, उसे पहली बार एहसास हुआ श्रोताओं कि माँ का जाना रिश्तों का अंत नहीं है बल्कि उनकी परीक्षा है। कुछ दिनों बाद रीमा मायके आई, वही आंगन था, वही तुलसी थी, वही दीवारें थी लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं था। विक्रम की पत्नी ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया और कहा, दीदी ये घर आपका भी है। रीमा ने आंगन की मिट्टी को छुआ और मन ही मन माँ से कहा, माँ आपने सही कहा था, मायका कभी खत्म नहीं होता। श्रोताओं आज की इस कहानी में एक बहुत बड़ा और गहरा सच छिपा है कि कई बार हम सोचते हैं कि माँ के बाद मायका खत्म हो जाता है लेकिन सच ये श्रोताओं कि मायका तब खत्म होता है जब रिश्तों में अपनापन खत्म हो जाता है। अगर भाई अपनी बहन को वही सम्मान दे, अगर परिवार उसे वही अपनापन दे तो माँ के बाद भी मायका तो जिंदा ही रहता है। याद रखिए श्रोताओं, माँ घर की आत्मा होती है लेकिन मायका रिश्तों की जिम्मेदारी से जिंदा रहता है। और आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि जिस घर में बहन का स्वागत आज भी मुस्कान से होता है वही घर सच में मायका कहलाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी, आगे भी कुछ बातें रहेगी जो मैं आपसे करूंगी लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी माँ और मायके के रिश्ते को लेकर। अक्सर कहा जाता है श्रोता साथियों कि मायका माँ से जुड़ा होता है, क्योंकि माँ ही उस घर की आत्मा होती है। माँ का प्यार, माँ की डांट, माँ की रसोई, सब कुछ मायके को खास बनाता है। लेकिन श्रोताओं, यहाँ एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। माँ के जाने के बाद भी मायका खत्म नहीं होता अगर रिश्तों में सच्चाई है, अपनापन जिंदा हो तो। भाई अगर बहन को वही सम्मान दे, परिवार अगर उसे वही हक दे, तो मायका हमेशा जिंदा रहता है हम बेटियों के लिए। माँ से मायका सजता है, लेकिन रिश्तों से वो बसता है। श्रोताओं, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ हर कोई अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझा है, वहाँ मायका एक भावनात्मक सहारा बनकर खड़ा रहता है। जब जीवन में परेशानियाँ बढ़ती है, जब मन टूटने लगता है, तब मायका एक ऐसी जगह बन जाता है श्रोताओं, जहाँ बेटी बिना डर के रो सकती है, वो अपनी बात कह सकती है और फिर से खुद को संभाल सकती है। कहते हैं ना दोस्तों कि मायका वो शक्ति है जो एक बेटी को हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। मायका सिर्फ एक व्यक्तिगत भावना नहीं है, ये समाज की मजबूत नींव है श्रोताओं। जब एक बेटी को उसके मायके से सम्मान और सहयोग मिलता है, तो वो अपने जीवन में और भी मजबूत बनती है। वो अपने परिवार को बेहतर तरीके से संभाल पाती है, समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। इसीलिए मायका केवल एक घर नहीं है, बल्कि एक सामाजिक ताकत है। कहते हैं दोस्तों कि मजबूत बेटियां ही मजबूत समाज बनाती है, और मायका उन्हें मजबूत बनाता है। आज के समय में हम देखते हैं कि रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है, लोग व्यस्त हो गए हैं, समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन श्रोताओं, मायके का महत्व कभी कम नहीं होना चाहिए। जरूरत है कि हम रिश्तों को समय दे, अपनापन बनाए रखें, ताकि हर बेटी को एहसास हो सके कि उसका मायका आज भी उसका है। रिश्ते समय से नहीं, भावना से चलते हैं। मायका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। आज जब हम इस शब्द मायका को सुने, तो सिर्फ एक घर की कल्पना मत कीजिए श्रोताओं, महसूस कीजिए उस प्यार को, उस अपनापन को, उस सुरक्षा को जो एक बेटी को हर मुश्किल में संभालता है। याद रखिए, मायका वो जगह नहीं जहां आप सिर्फ जन्म लेते हैं, मायका तो दोस्तों वो एहसास है जहां हम हर बार खुद को फिर से पा लेते हैं। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में भी एक बहन है श्रोताओं, तो उसका मायका कभी खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। इसीलिए दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि जब एक लड़की शादी के बाद अपने नए घर जाती है, तो उसके जीवन में कई बदलाव आते हैं, नई जिम्मेदारियां आती हैं, नए रिश्ते आते हैं, नई उम्मीदें आती हैं। लेकिन इन सब के बीच उसका मन थक जाता है, तो उसे याद आता है उसका मायका, क्योंकि मायका वो जगह है दोस्तों जहाँ उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता, जहाँ उसकी गलतियों पर भी उसे समझा जाता है, ठुकराया नहीं जाता। मायका एक ऐसा एहसास है दोस्तों जहाँ मैं को बिना बदले स्वीकार किया जाता है। मायका वो आंगन है जहाँ एक लड़की ने पहली बार चलना सीखा, जहाँ उसने गिरकर उठना सीखा, जहाँ उसकी छोटी छोटी खुशियों पर भी ताली बजाने वाले लोग थे। वही माँ का आंचल, वही पापा का साया, वही भाई बहनों की शरारतें। मायका दरअसल बचपन की वो खुशबू है दोस्तों, जो उम्र बढ़ने के बाद भी दिल में बसी रहती है। जहाँ बचपन मुस्कुराता है, वही मायका कहलाता है। ये थी आज की कहानी और इससे जुड़ी कुछ बातें। आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी बहनों का मायका ऐसे ही सजाए रखेंगे और अपने बहनों को वही हक देंगे जिस तरह से इस कहानी के माध्यम से विक्रम ने अपनी बहन को दिया। अब देख पा रहे हैं दोस्तों कि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।

दोस्तों इस गीत के साथ विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वाघ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं श्रोताओं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दोस्त जागृति को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था। नाना अंजलि बोन, हूँ था का? अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी। आ गई हूँ फिर से कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम हर रविवार को आपको कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में कुछ नई नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। तो जैसा कि आज भी रविवार का दिन है, तो आज भी कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नई कहानियाँ। बच्चों वो कहानियाँ कौन सी होने वाली है ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम गीत संगीत के साथ पहले मनोरंजन करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे कौन सी कहानियाँ रहने वाली है। तो बच्चों मजा बहुत आएगा कार्यक्रम में, लेकिन शुरुआत में पहले सुनते हैं हम कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी के साथ में।

वेलकम बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में। जैसा कि बच्चों, गीत संगीत तो कार्यक्रम में हमारे आपसे चल ही रहे हैं, तो अब मुझे आपको बताना है कि आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे बातचीत की पहली कहानी कौन सी रहने वाली है। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में जो कहानी मेरी आपसे रहने वाली है उसका नाम है चुटकी और जादुई जंगल की खोज। है ना बिल्कुल अनोखा नाम बच्चों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हो रही है। बच्चों, चुटकी का अनोखा दिन, यानी कि चुटकी एक प्यारी सी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। बच्चों, उसका सबसे बड़ा शौक था पेड़ पौधों और जानवरों के साथ खेलना। बच्चों, हर सुबह वह जंगल के पास जाकर वहाँ की ताजगी का आनंद लेती थी। एक दिन क्या हुआ, जब चुटकी अपने दोस्त मोंटू के साथ जंगल में खेल रही थी, उसे एक पुराना और रहस्यमय नक्शा मिला। नक्शे पर रंगीन पेड़ों, चमकते सितारों और अजीब से झील का नाम लिखा हुआ था। बच्चों, चुटकी के दोस्त मोंटू ने उत्सुकता से पूछा, अरे चुटकी, ये क्या है? चुटकी ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोली, मुझे लगता है कि यह किसी जादुई जगह का नक्शा है। तुम क्या कहते हो, हमें इसे खोजना चाहिए। अगले दिन बच्चों, सुबह चुटकी और मोंटू और उनका पालतू खरगोश बबलू नक्शे को लेकर जादुई जंगल की खोज पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई मजेदार चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेड़ों पर झूलती हुई तितलियां, गाते हुए पक्षी और बोलने वाला तोता। बच्चों, उनको देखकर तोता बोलता है, तुम जादुई जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? वहां पहुंचने के लिए तुम्हें तीन पहेलियां हल करनी होगी। तो चुटकी ने पूछा कि वो तीनों पहेलियां क्या है। तो तोता बोला, सबसे पहले पहली सुलझाओ। बच्चों, उसने कहा, ऐसा क्या है जो हमेशा चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं? मोंटू ने सोचा, बोला, वक्त। हाँ, जवाब है वक्त। बच्चों, फिर तोता मुस्कुराया और बोला, सही जवाब, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर क्या हुआ बच्चों? रास्ते में चुटकी और उसके दोस्तों ने एक नन्हे भालू को देखा जो पेड़ से गिरकर घायल हो गया था। चुटकी ने तुरंत अपने पास रखी दवा से उसकी मदद की। भालू, जिसका नाम गोलू था, उनकी मदद से वह बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें जादुई जंगल का रास्ता दिखा सकता हूँ। बच्चों, आगे बढ़ते हुए वे एक चमकती हुई झील पर पहुँचे। वहाँ एक बोलती हुई मछली मिली। मछली ने कहा, अगर तुम इस झील को पार करना चाहते हो तो मुझे यह बताओ कि किस चीज का स्वाद सबको अच्छा लगता है लेकिन दिखने में नहीं होती। बच्चों, ये सुनकर चुटकी के मन में सबसे पहले जवाब आया। उसने कहा, ज्ञान। फिर क्या हुआ? मछली ने मुस्कुराकर रास्ता खोल दिया। बच्चों, जब वे जादुई जंगल की सीमा पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे, पक्षी गाना गा रहे थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। लेकिन तभी एक बड़ा बंदर आया और बोला, यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी आखिरी पहेली का जवाब देना होगा। बंदर ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आवाज के सब कुछ बदल देती है? अब तो बच्चों मोंटू और गोलू सोच में पड़ गए, लेकिन चुटकी को भी ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आवाज के सब कुछ बदल देती है। इतने में वो सोच ही रहे थे कि चुटकी ने जवाब दिया, क्या वह समय है? बच्चों, बंदर ने हंसते हुए उन्हें आगे जाने दिया, यानी कि यह सही जवाब था। फिर क्या हुआ, जंगल के अंदर उन्हें पता चला कि वहाँ के जानवर एक दुष्ट जादूगर के कारण परेशानी में थे। जादूगर ने जंगल के सारे पानी के स्रोतों को बंद कर दिया था। बच्चों, चुटकी ने अपने दोस्तों के साथ जानवरों की इस समस्या को दूर करने के लिए एक योजना बनाई। फिर क्या हुआ, गोलू और बबलू ने जादूगर का ध्यान भटकाया। मोंटू ने उसके महल के गेट खोले और

0: चुटकी ने जादुई नक्शे की मदद से उसके पानी के स्रोत को खोल दिया। बच्चों जैसे ही पानी बहने लगा, जंगल के सारे जानवर खुश हो गए। जादूगर ने चुटकी से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा। बच्चों जंगल ने चुटकी और उसके दोस्तों को एक चमकता हुआ जादुई सितारा दिया, जो कि उनकी बहादुरी का प्रतीक था। फिर क्या हुआ, चुटकी, मोंटू और गोलू खुशी खुशी अपने गांव लौट गए। उन्होंने ये सीखा बच्चों कि सच्ची दोस्ती और बहादुरी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो बच्चों ये थी हमारी आज की पहली कहानी, चुटकी और जादुई जंगल की खोज। इस कहानी से हमें ये सीख मिली बच्चों कि हर मुश्किल का हल तो मिल सकता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो। और हमें अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए। यानी कि बच्चों ये कहानी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी, क्योंकि इस कहानी से हमें एक चीज ये भी सीखने को मिली कि अगर हमें किसी भी मुश्किल को पार करना है तो उसके लिए हमें धैर्य का उपयोग भी करना होगा। यानी कि हमारे पास में धैर्य की क्षमता भी होनी चाहिए। बच्चों हमने देखा कि अगर तोते की पहेली का जवाब चुटकी और मोंटू धैर्य के साथ नहीं देते तो शायद उस पहेली का जवाब उन्हें नहीं पता होता। तो ऐसे हम कह सकते हैं बच्चों कि हमें हमेशा अपनी मुश्किलों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। तो जैसा कि बच्चों ये कहानी तो हमारी पूरी हो गई, अब मुझे आपको मेरी दूसरी कहानी के बारे में बताना है। तो दूसरी कहानी के बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी के साथ में, और सुनते रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM।
1: चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचक चो गिलिगिली मल सुलुसुलु मल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम जगडुम चिकिचक चो।

बच्चों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने चुटकी और जादुई जंगल की खोज की कहानी के बारे में जाना था, अब यहीं बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। बच्चों, हमारी दूसरी कहानी का नाम है जादुई पेंसिल और टिंकू का कारनामा। यानी कि बच्चों, टिंकू एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही शरारती था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। आपको बताऊं तो पढ़ाई में वह ज्यादा तेज नहीं था और हमेशा अपनी कॉपी किताबों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बनाया करता था, क्योंकि इसी में उसको खुशी मिलती थी। एक दिन क्या हुआ, स्कूल से लौटते समय उसने एक बूढ़े आदमी को सड़क किनारे बैठे देखा। देखने में तो वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। बच्चों, टिंकू ने उससे पूछा, दादाजी क्या मैं आपकी मदद कर दूं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने टिंकू को एक सुनहरी पेंसिल दी और कहा, ये पेंसिल जादुई है, तुम इसका इस्तेमाल ध्यान से करना। बच्चों, टिंकू ने उस पेंसिल को हाथ में ले लिया और खुश होकर अपने घर पर आ गया। अगले दिन क्या हुआ, जब टिंकू स्कूल में अपनी कॉपी पर कुछ लिख रहा था तो उसने देखा कि जो कुछ वह लिख रहा था वह सच हो रहा था। उसने एक पतंग का चित्र बनाया और अचानक से वह देखता है कि उसकी कॉपी से एक असली पतंग निकलकर उड़ने लगी। बच्चों, टिंकू ये सब देखकर खुश तो था, लेकिन उसे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। अब टिंकू ने अपनी जादुई पेंसिल से गांव के लोगों की मदद करने का सोचा। वह जो भी चीज बनाता वह सच होती जाती थी। अगर किसी के पास खाने को कुछ नहीं होता था तो वह उनके लिए खाना बनाता, और अगर किसी के पास कपड़े नहीं होते तो वह उन्हें कपड़े भी बना कर दे देता था। लेकिन बच्चों, टिंकू के दोस्तों को जब पेंसिल के बारे में पता चला तो उनमें से कुछ ने इसका गलत फायदा उठाने की सोची। उन्हीं में से एक था मोनू, जो टिंकू का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने टिंकू की पेंसिल चुरानी चाही। उसने सोचा कि वह पेंसिल से अपने लिए ढेर सारा सोना बनाएगा। उसने सोने के सिक्कों का चित्र बनाया, लेकिन बच्चों वह देखता है कि पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, पेंसिल पर से एक छोटा सा संदेश ऊपर की ओर दिखाई देने लगा। उसमें लिखा था कि यह पेंसिल केवल अच्छे कामों के लिए बनाई गई है। बच्चों, ये पढ़कर मोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने टिंकू से माफी मांगी। तब से बच्चों, टिंकू को पता चल गया कि उसे इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना है। फिर टिंकू ने पेंसिल का सही इस्तेमाल करने की ठानी। उसने गांव में एक बड़ा खेल का मैदान बनाया जहां बच्चे खुशी-खुशी खेलने लगे। उसने गांव में एक पुस्तकालय भी बनाई ताकि बच्चे वहां जाकर किताबें पढ़ सके। बच्चों, धीरे धीरे टिंकू का गांव खुशहाल बन गया और जादुई पेंसिल की बदौलत हर कोई खुश था। लेकिन टिंकू को यह समझ में आ गया था कि असली जादू किसी चीज में नहीं बल्कि इरादों और मेहनत में होती है। एक दिन जादुई पेंसिल ने आखिरी बार कुछ लिखा, अब मेरा काम पूरा हुआ। टिंकू, तुमने सच्चे दिल से दूसरों की मदद की, अब यह जादू तुम्हारे अंदर है। और फिर बच्चों, पेंसिल धीरे धीरे गायब हो गई। टिंकू अब समझ गया था कि जादू असली नहीं बल्कि मेहनत और अच्छे कामों का परिणाम होता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, जादुई पेंसिल और टिंकू का कारनामा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि सच्चा जादू हमारी अच्छाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना में होता है, ना कि किसी चीज में। तो जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे कहानियाँ तो पूरी हो चुकी हैं बच्चों, जैसा कि हमने दो कहानियों के माध्यम से ये जान लिया, ये जो कहानियाँ होती है वो हमारे लिए कितनी प्रेरणादायी होती है। और अगर इन कहानियों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल रूप से जी सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों, कहानियाँ हमारी आपसे पूरी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं यहाँ पर एक और गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

प्यारे बच्चों, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के कार्यक्रम में जो भी कहानियां मैंने आपको सुनाई हैं, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो बच्चों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, बागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों, ये मुलाकात हमारी आपसे फिर होगी अगले रविवार को कुछ नई कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अब आपकी दीदी कशिश दीदी को आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। बाय बाय बच्चों।

साथियों, समाज सेवा केवल दूसरों की मदद करने का नाम नहीं है, बल्कि ये उस जिम्मेदारी को समझने का नाम है दोस्तों, जो हमें अपने समाज और अपने आसपास के लोगों के प्रति निभानी चाहिए। जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति का हाथ थामते हैं, किसी बच्चे को सही दिशा दिखाते हैं, किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनते हैं, या किसी परेशान व्यक्ति के लिए उम्मीद की वजह बनते हैं, तब हम समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा रहे होते हैं। साथियों, बदलाव हमेशा बड़े कामों से नहीं आता। कई बार हमारी छोटी सी संवेदनशीलता और मदद किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, समाज सेवा को केवल कर्तव्य नहीं बल्कि इंसानियत को मजबूत करने का माध्यम मानना चाहिए।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम कार्यक्रम हमारे मेहमान में हर रविवार को एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं, तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में हमारे मेहमान जुड़ेंगे। तो आइए श्रोता साथियों, आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम में हमारे मेहमान से। सर नमस्कार।
1: नमस्ते
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वागड़ रेडियो परिवार में। सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: जी मैडम, मेरा नाम नानूलाल रोत है। मैं अधीक्षक हूँ राजकीय किशोर संप्रेषण गृह बांसवाड़ा में मेरा पदस्थापन है।
0: जी जी,
1: मैं गांव का रहने वाला हूँ आनंदपुरी का। और मैंने 6ठी से 8वीं तक जो कक्षा है वो मिडिल स्कूल में गांव में आनंदपुरी पढ़ा हूँ मैं। और 9वीं से 12वीं तक मैं डूंगरपुर राजकीय महाराज स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ।
0: जी जी।
1: इसके बाद मैंने BSc ग्रेजुएशन वो मैंने गुरु गोविंद कॉलेज बांसवाड़ा से किया है। इसके बाद मैंने नर्सिंग डिप्लोमा किया। इसके बाद मैंने मेडिकल में सेवाएं दी 9 साल तक। इसके बाद मैंने RS एग्जाम के माध्यम से मैंने इसमें सेवा का मौका दिया, तो मैं इसमें समाज कल्याण विभाग में कैडर मिला और इसमें मैं अधीक्षक पद पर वर्तमान सेवा दे रहा हूँ।
0: जी सर, तो सर ये तो आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान पाए हैं कि आपका शिक्षा का क्षेत्र किस प्रकार से रहा। अब यही हम आपसे कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि आपका इस क्षेत्र से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था।
1: इसमें क्या है कि मुझे कहीं कहीं कुछ मास लेवल पर लोगों को बेनिफिट करवाना था, जैसे मेरा अंदर की जो प्रेरणा थी कि मुझे कुछ करो समाज के लिए, बच्चों के लिए, हित के लिए, कुछ सेवा के माध्यम से। तो मैंने सब सोचा कि मेरा कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा, तो मैंने मेडिकल में भी सेवा देने की कोशिश की। वहाँ से भी मेरा और जागृत हुई कि मुझे कुछ और भी मास लेवल लोगों को फायदा दिलवाना है।
0: जी जी।
1: मैंने फिर समाज कल्याण विभाग में सेवाएं दी। इसके फिर के बाद में विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और इसके माध्यम से ये बच्चों के हितों के बारे में भी अभी सेवाएं दे रहे हैं।
0: तो सर ये तो आपने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताया। अब यही हम जानना चाहेंगे कि आपके बचपन का कोई ऐसा अनुभव जो आपको आज भी याद है और आपको आगे बढ़ने में वहाँ प्रेरणा मिली थी।
1: जी मैडम, ऐसा हुआ था मैं जो 9वीं कक्षा में पढ़ा था महाराज स्कूल डूंगरपुर, तो मुझे डॉक्टर साहब के पास में वो सर्ट प्लान तो बनाने जाते थे, तो अटेस्ट कराने जाते थे, बजट ऑफिसर बनता है, तो उसमें क्या है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो साइन करवाते थे बजट ऑफिसर के। साइन कराने गया तो मेरे से वो सीट उल्टी लग गई, तो मेरे को डाटा मैंने वहां से ठान लिया कि मैं कोई इनको गजेट ऑफिसर बनूंगा और मैं भी ये शपथ पत्र जो होते हैं एफिडेविट करने का जो मौका मिलेगा उसमें कुछ मुझे कुछ प्रेरणा मिलेगी, मुझे करना है। वहां से मैंने कोई डॉक्टर बनूंगा वहां सपना पाला,
0: बिल्कुल
1: तो बन नहीं पाया। मेडिकल शिक्षा में जाके मैं थोड़ा नर्सिंग ऑफिसर बना, मैं तो वहाँ सेवाएं दी। इसके बाद वहां से मेरे को मुझे गजेट ऑफिसर बनना था, वो पोस्ट गजेट ऑफिसर नहीं थी, मैं प्रशासनिक सेवा में जाने का ठाना। आरपीएससी वाले से एग्जाम दिया और इसके बाद से मुझे गजेट ऑफिसर बनने का मौका मिला, तो वो मेरा सपना उस प्रेरणा से घटना, छोटी सी घटना से मुझे जुड़ा हुआ है, उससे कि मुझे प्रेरणा मिली।
0: जी सर, आपने सही कहा। तो अब यही कार्यक्रम के माध्यम से आप हमें ये बताइए कि जहां आज आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं वहां पहुंचने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
1: जी, इसमें मुझे क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव से निकला हूँ और मुझे पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आर्थिक कंडीशन भी सही नहीं थी, पिताजी की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मेरा खर्चा वगैरह पूरा कर सके। तो मैंने फिर वो अष्टम लेके अध्ययन किया डूंगरपुर 9वीं के 12वीं कक्षा तक मैं आश्रम 17 में रहा, तो हॉस्टल में रहने का भी मुझे इसका बेनिफिट मिला और आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ा। तो आगे भी मुझे कैनाल कॉलेज लेवल पर भी मैं जैसे कि आर्थिक चुनौती का सामना किया, फिर भी मैंने चुनौती का सामना करते हुए मैंने कैनाल आगे बढ़ा और एक ये आर्थिक परेशानियों को मैंने आगे आड़े आने नहीं दिया प्रतिभा के, और कोशिश करके मैं अपने सफलता के लिए मैं अग्रसर हुआ।
0: बिल्कुल सर, तो सर आपने जैसा कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को बताया है कि आज आप जिस सफलता के मुकाम पर पहुंच गए हैं वहां पहुंचने के लिए आपने ढेर सारी चुनौतियों का सामना किया था। यहीं अब आप हमें ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि आप बाल सुधार को लेकर प्रयास कर रहे हैं
1: जी।
0: तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आज के समय में बच्चे किन किन प्रमुख कारणों से अपराध की ओर बढ़ रहे हैं।
1: जी, आज के जो सोशल मीडिया का युग है उसमें जो बच्चों को कोई जानकारी होती नहीं है, वो अनचाहे बच्चों से कोई सा गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसमें जो बच्चे होते हैं 0 से 18 बच्चे उनको बालक की श्रेणी माना जाता है, तो उनसे कोई गलती हो जाती है उसके लिए क्या सरकार ने इससे कुछ नियम बना रखे है उनको सुधार करने के लिए, तो उसमें JJ एक्ट का प्रावधान बना रखा है
0: जी जी।
1: और पोस्को एक्ट 2012 इस तरह के प्रावधान बनाए हैं, इसके तो बच्चों को ऐसा कानून की जानकारी से उनको बताया जाता है, इसका बच्चों के उनके बचाव के लिए उनके सहयोग के लिए ऐसे एक्ट बनाए हैं और बच्चों को सही न्याय मिले इसके लिए सरकार द्वारा ये विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और एक्ट में प्रावधान है और ऐसे बच्चों के लिए किशोर न्याय बोर्ड समिति बनी हुई है जिला स्तर पे और जिला बाल समिति बनी हुई है। जो किशोर न्याय समिति जो बनी हुई है जे एक्ट के प्रावधान के, वो विधि संघर्ष बच्चे जो कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे बच्चों का वो निर्णय देखती है, उनका बारे में फैसला करती है।
0: बिल्कुल।
1: और जो CWC जो है जिला बाल कल्याण समिति है, वो जो नीड केयर वाले बच्चे हैं, जो फेंके हुए बच्चे अनाथ बच्चे हैं, उनके बारे में उनके सर्वोत्तम हित का वो निर्णय करती है, उनके सर्वोत्तम हित के लिए काम करती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को अपराध की ओर बढ़ने से रोकने के लिए बाल सुधार गृह बनाए गए हैं,
1: जी जी।
0: तो यही आप हमें ये बताइए कि बाल सुधार गृह का वास्तविक उद्देश्य क्या है और क्या यह केवल सजा देने की जगह है या बच्चों के पुनर्वास का केंद्र भी है?
1: ये बाल सुधार गृह कोई जेल नहीं है, इसमें क्या बच्चों को उनके जो गलत आदत की वजह से गलत कानून की जानकारी के बाद में उनसे जो गलतियाँ होगी उसके लिए उनको विशेष सुनवाई के लिए उनको रखा जाता है। उसमें पुलिस का माध्यम न हो के किशोर न्याय बोर्ड जो होता है वो अलग से बच्चों की कोर्ट होती है, वो इसके बाद सुनाई करती है। ऐसे बच्चों को जो आते हैं वो तो JJB के सामने पेश करते हैं, फिर उनको वो ऐसे बाल सुधार गृह में भेजते हैं। तो बाल सुधार गृह में बच्चों को सुधार किया जाता है, उनको अनुशासन सिखाया जाता है कैसे रहना है, किससे रहना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, और उनसे जो छोटी में गलतियाँ हुई उसके उनको पश्चाताप करने के अलावा उनको बताया जाता है कि आपने जो गलती हुई उसने आपको भूलवश हुई है, आपको किसी ने बताया नहीं, ये गलत है कानून इससे से, तो उनको इस तरह से सिखाया जाता है आगे से ध्यान रखिए और उनको वापिस अगले जीवन में उनको आगे बढ़ना है तो ये गलतियों को आप नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े और उनको आगे उनको किस तरह से अपना विकास करने से उनको पूरा समझाता है। उसके लिए किशोर न्याय जो हॉस्टल बने हुए हैं, जो संप्रेषण गृह बने हुए हैं, उसमें परामर्शदाता रहते हैं, काउंसलर के माध्यम से काउंसलिंग दी जाती है, परीक्षा अधिकारी के माध्यम से उनको भी समझाया जाता है, सुधार किया जाता है, और उनकी सुरक्षा के लिए भी विशेष सुरक्षा में लगाए जाते हैं। उनको दो टाइम भोजन की सुविधा की दी जाती है, दो टाइम नाश्ते की सुविधा दी जाती है, और उनकी विशेष ख्याल रखा जाता है, उनकी पूरी केयरिंग होती है, ऐसे बच्चे की तरह केयरिंग करते हैं उनको, ताकि वो उनको अलग से भावना फील नहीं हो कि हम अपराध किया है, अपराध की भावना नहीं हो उनके मन में, और उनको उसको आगे उनके बारे में बच्चों के हित के बारे में सोचा जाता है।
0: बिल्कुल सर।
1: जैसे गृह से बाहर उनको जो पुनर्वास करा जाता है तो उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, और अच्छा आगे होके परिवार को सहयोग प्रदान करें, इसे उनको पुनर्वास कराने की पूरी हेल्प की जाती है। इसके लिए जिला स्तर पर जिला विधिक प्राधिकरण जो ढालसा जो विभाग है कोर्ट के माध्यम से उनको कानूनी सहायता दी जाती है, ताकि उनका किशोर न्याय बोर्ड में वो जो कानून की सहायता में उनको हेल्प मिल जाती है।
0: बिल्कुल।
1: सरकारी वकील के माध्यम से, ताकि उनको प्राइवेट वकील का ज़्यादा खर्चा होता है तो मेंटेन नहीं कर पाते परिवार आर्थिक, तो उनको ये सहायता दिलाई जाती है।
0: जी सर।
1: फिर वहाँ जो होम में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाई के लिए भी विशेष सुविधा दी जाती है, कोई बच्चा पढ़ता है उसको मोटिवेट किया जाता है उसको, और परीक्षा के माध्यम फॉर्म भरा उनको एग्जाम भी दिलवाए जाते हैं।
0: बिल्कुल सर। तो सर आपने जैसा कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को बाल सुधार गृह के बारे में बताया है कि वहाँ बच्चों को बड़े ही प्यार से सुधारा जाता है। हम देखते हैं कि समाज में कहीं बाल सुधार गृह को लेकर कुछ भ्रांतियाँ रहती हैं, तो आपकी बातों से हमारे श्रोता साथी ये समझ पाए हैं कि बाल सुधार गृह बच्चों के लिए कोई जेल नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए एक कह सकते हैं कि प्रयास किया जाता है वहाँ पर। अब यहीं सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कार्यक्रम के माध्यम से कि जो बाल सुधार गृह है वहाँ हम देखते हैं कि जब बच्चे वहाँ से बाहर निकलते हैं तो क्या समाज में दोबारा सामान्य जीवन जीने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?
1: जी, समाज में थोड़ा सा वैसे बच्चों को गलत तरीके से देखा जाता है।
0: जी जी।
1: और जैसे हमारे सुधार गृह से जो बाहर जाते हैं उनको पूरा शिक्षा दीक्षा देके भेजते हैं कि आपको इस तरह से समाज में रहना है, ऐसा रहना है, इस तरह की शिक्षा लेनी है, इस तरह से आगे बढ़ना है, आर्थिक कठिनाइयों का कैसे सामना करना है, अपना जो जीवन है वो रोजगार का किस तरह से आगे बढ़ना है पूरा सिखाया जाता है। हिसाब से उनको व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से सेशन सत्र आयोजन करा उनको समझा जाता है कि आगे पुनर्वास होने पर वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, उनका भावी जीवन उज्ज्वल बना सके, सिखाया जाता है कि जब वापिस वो ऐसी हरकतें नहीं करे, वापिस इस तरह से गलतियां नहीं करे और समाज की मुख्य धारा जुड़ करके अपना जीवन यापन कर सके।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अब यही मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि यदि किसी बच्चे की गलत संगत में पड़ने की आशंका अगर हो तो परिवार और समुदाय सबसे पहले क्या कदम उठाए?
1: जी, जो बच्चे जो होते हैं वो परिवार की जो ध्यान नहीं देना बच्चों के बारे में, बच्चों का किस तरह की संगति है, किस तरह बच्चे रहते हैं, किस तरह उनकी एक्टिविटी, उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
0: जी जी।
1: क्योंकि बच्चे जो होते हैं 18 वर्ष तक के वो नासमझ ही होते हैं, एक तरह से उनको तो परिवार की भूमिका सबसे पहले आती है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा समय परिवार के साथ गुजारता है, उसके बाद स्कूल में जाता है, स्कूल में ज्यादा समय गुजारता है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षा विभाग और परिवार दोनों मिलकर बच्चे की विशेष ध्यान रखने की थोड़ी आवश्यकता है, और रख भी रहे पर विशेष प्रयास भी कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से।
0: जी जी,
1: पर जितना जो होना चाहिए, आजकल सोशल मीडिया ऐसा आ गया है, तो इस वजह से उनकी संगीत ऐसी होगी तो उसको सुधारने की आवश्यकता है, सबको ध्यान देने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर। तो सर, अब कार्यक्रम के माध्यम से अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप हमारे अभिभावकों, शिक्षकों और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि हर बच्चा सुरक्षित रहे, जागरूक रहे और जिम्मेदार नागरिक बन सके।
1: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परिवार और समाज और जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ऐसे जो कानून के बारे में जानकारी देवे, ताकि वो गलत संगत में नहीं जावे, गलत हरकत नहीं करे, क्योंकि उनके अलग अलग जो किस कानून में क्या धारा है इस बारे में शिक्षा के प्रति एक सेशन सत्र होना चाहिए स्कूल में भी, ताकि बच्चों को जागरूक किया जाए कि ये काम, ये जो कर रहे हैं वो गलत काम है और गलत हरकतें हैं और ये कानून के दायरे में आता है, इसको इसमें आगे जाके समस्या खड़ी हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरा, उनको रोजगार परक शिक्षा दी जावे और उनको, ताकि वो इसमें किस तरह आगे बढ़ना है जीवन में, वो उसके बारे में वो जीवन कर सके।
0: जी सर। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपना कीमती अमूल्य समय हमारे श्रोता साथियों को दिया। धन्यवाद सर।
1: थैंक यू।
0: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में हमारे मेहमान श्रीमान नानूलाल जी रोथ जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना श्रोता साथियों, जैसा कि हम उनके जीवन परिचय से भी रूबरू हो पाए। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से ये बात महत्वपूर्ण समझने में मिलती है कि बचपन को सही दिशा देना केवल परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। किसी बच्चे से गलती हो जाना उसके पूरे जीवन का अंत नहीं होता साथियों। सही मार्गदर्शन, शिक्षा, सकारात्मक वातावरण उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने में मदद कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े थे नानूलाल जी रूथ, जो कि अध्यक्ष महोदय हैं, जिनके माध्यम से बाल सुधार गृह से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर श्रोता साथियों हम चर्चा कर पाए हैं। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी साथियों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारे मेहमान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम हमारे मेहमान से हम विदा लेना चाहेंगे। आपसे सिर्फ कार्यक्रम के अंत में दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि हर बच्चा एक नई शुरुआत का हकदार होता है, क्योंकि एक गलती उसके पूरे भविष्य की पहचान नहीं हो सकती। बच्चों को सजा से ज्यादा सही दिशा, समझ और अवसर की जरूरत होती है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस पते पर हमारा पता लिखे, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने राय सुझाव और हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम हमारे मेहमान में एक नए शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। नमस्कार।

0: આપે ક્યારે વિચાર કર્યો હે કે જૈયા પેડની છાવમાં આપણે રહ યા આપણને કેટલી શાંતિ મળે હે, ઝીણી હવામાં આપણે હાલ રહ એ ભી આપણા થકી કઈ આશ રાખે હે. હવે અગર પેડ ને રહેંગા તો આપણે હરતે જીવંગા. પ્રકૃતિ આપણી જરૂરત નથી બલ્કી આપણી જિમ્મેદારી હે. એક પેડ લગાડંગા, પાણીને બચાડંગા ને આપણે ધરતીને જીવનદાન આલંગા. હવે પ્રકૃતિને બચાવો, ભવિષ્યને હદારો. હવે આજે નાના નાના કદમ હે એ આબાવાળા કાલને બદલાવની શરૂઆત હે. વાગડ રેડિયો વાગધરા સંસ્થા દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત. एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं. आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए. वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित.
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM.
2: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में.
3: साथियों, सत्य और अहिंसा केवल विचार नहीं है बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम राह है. यदि हर व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में अपनाए तो समाज में शांति के साथ साथ विश्वास और मानवता का नया युग स्थापित हो सकता है.

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी आत्मदर्शन कार्यक्रम में हम हर

0: उपवास प्रकरण की आगे की चर्चा में। श्रोता साथियों, इस उपवास के समय गांधी जी की उम्र 78 वर्ष की थी।
1: बिल्कुल,
0: यह ध्यान रहे कलकत्ते में तो मानो उपवास ने गांधी जी के आंगन में आकर दरवाजा खटखटाया था। कशिश, वैसे तो गांधी जी दूसरी बार नुआखली जाने के लिए कलकत्ता आए थे। वहां की परिस्थिति बिगड़ती देखकर सुरावधि आदि ने उन्हें कलकत्ते में ही रोक लिया था।
1: बिल्कुल,
0: कलकत्ते ने स्वतंत्रता दिवस कौमी एकता के अपूर्व माहौल में मनाया था। हालांकि गांधी जी ने उस दिन उपवास रखा था, एकता के ये दृश्य धोखेबाज निकलेंगे ऐसी उनको आकांक्षा थी और इस संबंध में उन्होंने चेतावनी भी दे दी थी। सितंबर के आरंभ में कशिश फिर से हिंसा फूट पड़ी। हिंसकों के झुंड बेलिया घाट के हैदरी मिशन पर आ पहुंचे थे। वहां गांधी जी शहीद सुहरावर्दी के साथ उतरे हुए थे। इस मकान को उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। गांधी जी पर भी ईंट या लाठी फेंक कर हमला करने के प्रयास हुए थे। गांधी जी ने उसी क्षण नुआखली न जाकर कलकत्ते में ही रुकने का निर्णय लिया था। उन्होंने शाम को खाना नहीं लिया था, तभी लोगों को पता लगा था कि वे उपवास पर उतर आए हैं। इस दंगे के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में हिंदू महासभा और फॉरवर्ड ब्लॉक एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों गांधी जी के उपवास के समाचार बिजली की रफ्तार से पूरे शहर में फैल गए थे। किसी किसी ने इसकी आलोचना की, कोई कोई दुखी हुआ और कोई कोई तो ये सोचने लगा कि उनका उपवास छुड़वाने के लिए वे क्या कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इस प्रकार अंजलि जी सोचने वालों को गांधी जी सलाह देते थे कि तुम मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों को शांति बनाए रखने के लिए समझाओ। ऐसा प्रयास करते हुए दो युवक सचिन मित्र और स्मृतिश बनर्जी ने मौत को गले लगा लिया। गांधी जी ने उनके परिजनों को सांत्वना देने के साथ उन्हें शांति के कार्य में यथासंभव अपनी सेवा देने का सुझाव दिया। दोस्तों, हिंदू महासभा के नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी उस समय शहर में बीमार थे। उनसे मिलने के लिए जब गांधी जी की तरफ से प्यारेलाल जब गए, तब वे तुरंत यह बात समझ गए कि स्वतंत्रता के बाद यदि हमारे देश में तत्काल दंगा होगा तो पाकिस्तान से उसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी आएगी।
0: जी जी,
1: उन्होंने उसी समय कलकत्ते के नागरिकों को शांति स्थापित करने की अपील का पत्र तैयार करके उस पर अपने हस्ताक्षर करके सौंपे। कलकत्ते के अधिकतर अंजलि जी दलों के नेताओं ने उस अपील पर हस्ताक्षर किए थे। स्थान स्थान पर लोग शांति के प्रयास में लग गए। उन दिनों गांधी जी से किसी ने कहा कि दंगा तुम मवाली करते हैं। गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ये बात सच है, तब भी उन्हें मवाली बनाने में समाज जिम्मेदार है। मवाली को हम न समझा सके, तब भी हमें उनका उपयोग करने वाले तत्वों को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए।
0: जी जी,
1: इस उपवास में गांधी जी की तबीयत काफी पहले ही बिगड़ गई थी। साथियों, उनकी हालत चिंतनीय थी। यह बात शहर भर में फैल गई। वातावरण में एक ही बात गूंज रही थी, हमारे लिए गांधी जी अपने प्राण जोखिम में डाल रहे हैं। दंगों में सक्रिय गुंडे जब अपने घर गए तो उनके नियमित खाना तैयार था, पर गृहिणियों ने मुंह में एक भी दाना नहीं डाला था।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी हमारे लिए प्राण दे रहे हैं तो हम खाना कैसे खा सकती हैं? इस प्रश्न को कईयों ने कानों से सुना और कईयों ने अपनी आंखों से पढ़ा भी और बदलाव आया। पहले एक दो, फिर छोटी छोटी टुकड़ियों में हिंसा करने वालों ने खुद गांधी जी के सामने आकर अपनी गलतियां स्वीकार की।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हैदरी मेंशन में गुंडों के हथियारों का तट लग गया। एक के बाद एक मोहल्ले से पूरी शांति स्थापित होने के समाचार आने लगे। नेताओं ने आकर गांधी जी से प्रार्थना करने की विनती की। गांधी जी ने कहा यह चेतावनी देकर कि ऐसी हिंसा फिर से होगी तो वे जान दे देंगे। उन्होंने अनशन तोड़ दिया। जहां दंगे भड़के थे, उन मोहल्लों में एक कौम के लोगों ने दूसरी कौम को गले लगाकर उनका मुंह मीठा किया। अंजलि जी,
0: बिल्कुल। श्रोता साथियों, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को लिखा कि एक सेनापति और एक प्रशासक के नाते मुझे कहने दें कि पंजाब में हमारी 55,000 की फौज खड़ी है और हम स्थिति को काबू में नहीं ला सकते। पूर्व में हमारी एक व्यक्ति की फौज है और उसने शांति स्थापित कर दी है। दिल्ली का तो वातावरण ही ऐसा था कि गांधी जी जैसों के प्राण घुटने लगे। शरणार्थियों ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली छोड़कर गए लोगों के घरों का भी यही हाल था। शांति स्थापित करने के लिए जाने वाले लोगों पर सांप्रदायिक संगठनों के दफ्तरों में से गोलियां छूटती थी।
1: बिल्कुल,
0: घायल होकर अस्पताल में पहुंचे लोगों पर हमला होता था। विभाजन के बाद भी जिन लोगों ने भारत न छोड़ने का निर्णय लिया था, उन मुस्लिमों का विश्वास डगमगाने लगा था। गांधी जी ने प्राइम

0: के लिए आने वाले दो तीन मौलानाओं ने उनसे कहा कि अब तो हमें इंग्लैंड की टिकट कटवा दो, हमें पाकिस्तान नहीं जाना और हिंद में हमसे रहा नहीं जाता।
1: बिल्कुल।
0: अंतिम कुछ दिनों में गांधी जी बहुत घबराते थे, वे तीव्रता से प्रार्थना करते थे। मौलानाओं को तो गांधी जी ने उलाना दे दिया, पर स्वयं सोचने लगे कि मैं सुरक्षित हुए बिना इनकी हिम्मत रखने की सलाह कैसे दे सकता हूँ। 13 तारीख को सोमवार था, उस दिन प्रार्थना सभा में गांधी जी का लिखित प्रवचन पढ़कर सुनाया गया।
1: बिल्कुल।
0: गांधी जी ने दिल्ली में पूरी शांति न होने तक अनशन की घोषणा की थी।
1: जी हां दिलीप जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी के उपवास प्रकरण को लेकर ढेर सारी बातें जान रहे हैं, ये बातें हमारी आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि हमने गीत से पहले जाना कि 13 तारीख को सोमवार था और उस दिन प्रार्थना सभा में गांधी जी का लिखित प्रवचन पढ़कर सुनाया गया। गांधी जी ने कशिश दिल्ली में पूरी शांति न होने तक अनशन की घोषणा की थी।
1: बिल्कुल,
0: उपवास से पहले अनुभव की जाने वाली अकुलाहट उपवास शुरू करने के बाद फौरन खत्म हो गई। वे परम शांति का अनुभव करने लगे। वे उपवास को उपासना का माध्यम मानते थे और एक बार उपवास शुरू करने के बाद स्वयं को श्री हरि के शरण में सौंप देते। उपासना और उपवास की जोड़ी ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे को शक्ति देते।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों, इस उपवास का प्रभाव मात्र इस देश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सहित अन्य देशों पर भी पड़ा। दिल्ली के होटलों ने भोजनालय बंद रखे। कट्टर हिंदू मोहल्लों ने मुस्लिम भाई बहनों का स्वागत किया।
0: बिल्कुल,
1: जिन शरणार्थियों में से कोई कोई गांधी जी को सलाह देता कि आप राजनीति छोड़कर हिमालय चले जाओ, उनमें से लगभग 1,00,000 शरणार्थियों ने गांधी जी की सहानुभूति में खाना छोड़ दिया।
0: बिल्कुल
1: साथियों, भारत छोड़कर पाकिस्तान अधिकांश उपवास किसी न किसी धार्मिक कारण से किए गए थे। संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित प्रश्न को लेकर उपवास शायद गांधी जी ने पहली बार ही किए थे। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी कई बार उपवास विषयक अपने लंबे अनुभव के कारण स्वयं की उपवास विशेषज्ञ के रूप में पहचान कराते थे। साथियों, उनके अलग अलग उपवासों के उदाहरण देते समय गांधी जी द्वारा स्वयं अपने अनुभव के आधार पर उपवास बाबत निकाले गए निष्कर्ष संक्षेप में बताना चाहेंगे। जैसे कि उपवास अंदर की प्रेरणा से किए जाएं, किसी दूसरे के उपदेश या चढ़ाने से नहीं।
0: बिल्कुल,
1: जिस व्यक्ति या समूह पर उस उपवास का सीधा असर पड़ता हो उसके साथ उपवास करने वाले का संबंध स्नेह या आत्मीयता का होना चाहिए। उपवास किसी से बदला लेने या किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए नहीं होते। मनुष्य अपने हृदय का टटोलने या आत्मशुद्धि से उपवास अवश्य कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: उपवास के समय मन शांत रहना चाहिए अंजलि जी, और उपवास करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य कम कर देने चाहिए। मानसिक तनाव भी कम कम रखना चाहिए। एक तरह से देखें साथियों तो उपवास प्रार्थना का एक प्रकार है। उपवास करने वाला उपवास को ईश्वर की गोद में बैठने के एक साधन के रूप में देखे तो प्रार्थना से उपवास को और उपवास से प्रार्थना को बल मिलता है।
0: बिल्कुल, तो कशिश इस तरीके से कार्यक्रम में आज हमने सबके गांधी कार्यक्रम में गांधी जी के उपवास प्रकरण के बारे में जाना।
1: जी हाँ,
0: अगले रविवार को हमारी श्रोता साथियों से फिर मुलाकात होगी गांधी जी के नए प्रकरण नारी के साथ में। लेकिन तब तक के लिए इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति चाहेंगे। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: हमरो घनी बोने पूछे हैं जमी माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है। पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है। फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती। जैवरे अधिकार हंग्रा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई ने बहनों, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
4: होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: जागृति बोल, आपने कार्य सोचू है
1: अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
5: नाना अंजलि बोन हूँ था का
1: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
5: ओ अंजलि बोन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
1: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
5: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
1: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
6: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444

वागर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है। चले वतन इसी से है, यही हमारा अभिमान है, ये हमारा संविधान है। उद्देशिका का मंत्र है, लोकतंत्र ये गणतंत्र है, न्याय की ये नीति है, संपन्नता की रीति है, अखंडता इसी से है, यही निरपेक्षता का मान है और यही हमारा संविधान है।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में पिछले रविवार ये हमारे श्रोता साथियों से बातचीत रही थी महात्मा गांधी और भारतीय संविधान में। हमने जाना था कि कैसी व्यवस्था चाहते थे गांधी जी और संसदीय व्यवस्था गांधी जी की दृष्टि में क्या थी। इसी के साथ हमने जाना गांधी और मौलिक अधिकार के बारे में। हमने इसी के साथ एक और चीज जानी थी कि गांधी जी की दृष्टि में कर्तव्य क्या है। आज रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत रहने वाली है कि कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी।
1: जी हाँ, जैसा कि अंजलि, कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी, इसको लेकर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने जिस संविधान का सपना बुना था उसके बारे में उनका सोचना था कि एक इंसान दूसरे इंसान में अपना जीवन प्रतिबिंब देखेगा। ऐसा करते हुए वह किसी का अहित नहीं चाहेगा। उनका मानना था कि जब वह अपना जीवन दूसरे व्यक्ति या समुदाय के साथ साझा करेगा तब वह सभ्यता के सुखद मुकाम पर होगा। इस प्रकार गांधी जी का संविधान मनुष्य के परस्पर रिश्तों पर जोर देता है व सामुदायिक साझेदारी के भी पैरोकार थे। गांधी जी का संविधान साझा सोच, साझा हित और संसाधनों की साझेदारी के साथ आगे बढ़ने की वकालत करता है।
0: यही बात करें जागृति जी सभ्यता और नीति की, तो गांधी जी ने लिखा कि लोग अपने खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्हें एहसास ही नहीं होता कि जिसे वे सभ्यता का विकास कहते हैं वह वास्तव में रोग है।
1: जी हाँ,
0: उन्होंने लिखा कि लोग बाहरी दुनिया की खोजों और शरीर के सुख में सार्थकता और पुरुषार्थ मानते हैं। 100 साल पहले यूरोप के लोग जैसे घरों में रहते थे उनसे ज्यादा अच्छे घरों में आज रहते हैं। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे और भालों का इस्तेमाल करते थे, अब वे पतलून पहनते हैं और भालों के बदले 5 गोलियां छोड़ने वाली बंदूक का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी हाँ,
0: पहले मामूली हल से मेहनत करके जमीन जोतते थे, उनकी जगह भाप के यंत्रों से हल चलाकर एक आदमी बहुत सारी जमीन जोत लेता है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारा पैसा कमा लेता है। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग बैलगाड़ी से 12 कोस की मंजिल तय करते थे जागृति जी, अब रेलगाड़ी के 400 कोस की मंजिल तय करते हैं। यह सभ्यता की चोटी मानी गई है। लोग सोचते हैं कि हवाई जहाज से चंद घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकेंगे, हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं रहेगी, हाथ पैरों का काम नहीं पड़ेगा, सारा काम यंत्रों से ही हो जाएगा।
1: जी हाँ,
0: आज तोप के एक गोले से हजारों जाने चली जा सकती हैं। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग खुली हवा में जितना ठीक लगे उतना काम स्वतंत्रता से करते थे।
1: बिल्कुल,
0: अब हजारों आदमी कारखानों में या खानों में इकट्ठा होकर काम करते हैं, उनकी हालत जानवर से भी बदतर है।
1: जी हाँ,
0: पहले लोगों को मार कर पीट कर गुलाम बनाया जाता था, अब पैसों और भोग का लालच देकर गुलाम बनाया जाता है।
1: जी हाँ,
0: सभ्यता के इन अनुभवों में नीति या धर्म की बात ही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि नीति से हटकर हासिल किया गया आविष्कार संकट को ही जन्म देगा।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। जैसे कि आपने बताया सभ्यता और नीति के बारे में, यही हम जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि गांधी जी राष्ट्र की सुरक्षा पर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे, वह यह भी नहीं चाहते थे कि कोई अन्य देश भारत पर कब्जा करे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सत्य, अहिंसा और अभय के मूल्य हो सकते हैं। यह बात गांधी जी के सपनों के संविधान में दिखाई देती है।
0: जी जी,
1: विदेशी हमलों में सुरक्षा के लिए भी विकेंद्रीकरण एक अनिवार्य रणनीति है। साथ ही स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान में लिखा गया है कि जब बड़े बड़े कारखाने और उद्योग एक ही जगह केंद्रित हो जाते हैं तो उन्हें चंद आधुनिक हथियारों से निशाना बनाकर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को आसानी से तोड़ा जा सकता है।
0: जी जी,
1: परंतु हम देखते हैं यदि उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो तो उन्हें कोई भी आधुनिक हथियार एक साथ नहीं मिटा सकते। व्यवसाय उद्योगों का केंद्रीकरण देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करता है। उत्पादन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था से युद्ध जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी देश को अपनी बुनियादी जरूरत के सामान के अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें वैश्विक शांति की तो हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान में लिखा है कि यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में हर युद्ध का बुनियादी कारण आर्थिक शोषण और विश्व बाजार पर नियंत्रण पाने का भयंकर लालच है। अब युद्धों में विनाश का सामना करने के बाद ये बड़े देश अपने यहाँ के उत्पादों का निर्यात बढ़ाकर अपनी विलासिता को भोगते रहना चाहते हैं। उपनिवेश बनाए रखने की यह प्रवृत्ति दुनिया में दुर्भावना और हिंसा को बरकरार रखेगी। जो देश विश्व शांति बनाने की मंशा रखते हैं उन्हें अपने या स्थानीय और विकेंद्रीकृत उद्योग स्थापित करने चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आंतरिक रूप से समान वितरण की व्यवस्था स्थापित किए बिना कोई भी देश विश्व शांति की कल्पना नहीं कर सकता। यदि उपनिवेशवाद और आर्थिक नियंत्रण की भावनाओं को नियंत्रित किया जा सके तो विश्व शांति स्थापित हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि हम कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में जान पाए कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी, उसी के साथ हमने जाना सभ्यता और नीति के बारे में, साथ ही हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जाना और वैश्विक शांति के बारे में। आगे हम जानेंगे रेल परिवहन की मशीनों के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे रेल परिवहन की मशीनों के बारे में
1: जी जी,
0: तो अंजलि परिवहन पर गांधी जी के विचार बहुत बहस तलब है। वह हिंद स्वराज में लिखते हैं, रेल से अकाल बड़े हैं क्योंकि रेलगाड़ी की सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहाँ महंगाई हो वहाँ अनाज खींच जाता है, लोग लापरवाह बनते हैं और उससे अकाल का दुख बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि रेल है तो आज हिंदुस्तान में एक राष्ट्र का जोश देखने में आता है। यह आपकी भूल ही है। आपको अंग्रेजी ने सिखाया है कि आप एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों बरस लगेंगे। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब हम एक राष्ट्र थे, हमारे विचार एक थे, तभी तो अंग्रेजों ने यहाँ एक राज्य कायम किया। भेद तो हमारे बीच बाद में उन्होंने पैदा किए। एक राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं थे, लेकिन हमारे मुख्य लोग पैदल या बैलगाड़ी से हिंदुस्तान का सफर करते थे।
1: जी जी।
0: वे एक दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। लोग देशांतरण करते थे, वे घर में या अपने राज्य की सीमा में ही दिन भी बिता सकते थे, पर उन्होंने अलग अलग स्थानों की यात्रा करके एकता का विचार स्थापित किया।
1: जी बिल्कुल, यही बात करें जागृति जी, तो वास्तव में भारत में रेलों के जाल की बुनावट इस विश्लेषण के आधार पर की गई कि देश के किन हिस्सों में लोहा, कोयला, नील या इमारती लकड़ी की प्रचुर उपलब्धता है। प्राथमिक रूप से उन स्थानों तक पहुंचने और वहां से प्राकृतिक संसाधनों को ब्रिटेन ले जाने के लिए रेल का जाल बुना गया। सवाल यह है कि जब हम अपनी सुविधा के लिए कोई भी आविष्कार करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तब क्या उसके साथ जुड़े हुए नैतिक और अनैतिक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं या नहीं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ उद्योग और रोजगार को लेकर हम बात करें तो विकास हमारे दौर का सबसे चर्चित शब्द है। हर नागरिक विकास चाहता है। आम नागरिकों के लिए विकास का अर्थ है बेहतर, सुखमय, शांतिपूर्ण और भयमुक्त जीवन, परंतु नीति निर्माताओं के लिए विकास का अर्थ है संसाधनों पर एकाधिकार, पूंजी का केंद्रीकरण और समाज को सत्ता का उपनिवेश बना देना।
1: जी बिल्कुल।
0: साथियों, गांधी जी मानते थे बड़े पैमाने पर होने वाला उत्पादन ही दुनिया की मौजूदा संकट में स्थिति के लिए जिम्मेदार है। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का अनिवार्य परिणाम ये होगा कि जो जो प्रतिस्पर्धा और बाजार की समस्याएं बड़ी होंगी त्यो त्यो गाँवों का शोषण भी होगा।
1: जी,
0: इसीलिए हमें सारी शक्ति इसी प्रयत्न में लगानी चाहिए कि गाँव स्वावलंबी बने और वस्तुओं का निर्माण और उत्पादन अपने उपयोग के लिए करें। यदि उत्पादन की ये पद्धति स्वीकार कर ली जाए तो फिर गांव वाले ऐसे आधुनिक यंत्रों और औजारों का, जिन्हें वे बना सकते हो और जिनका उपयोग उन्हें आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त रहता हो, उसका उपयोग खुशी से करें। उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती, अलबत्ता उनका उपयोग दूसरों के शोषण के लिए नहीं होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यही बात करें जागृति जी न्याय और सांप्रदायिकता की। श्रोता साथियों, गांधी जी हिंद स्वराज में लिखते हैं, यह माना जाता है कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों के आने से यह एक राष्ट्र नहीं रहा। हिंदुस्तान में चाहे जिस धर्म का आदमी रह सकता है, इससे राष्ट्र मिटने वाला नहीं है। दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का अर्थ एक धर्म नहीं किया गया है।
0: जी हाँ।
1: हिंदुस्तान में तो ऐसा था ही नहीं। हिंदू और मुसलमान के झगड़े तो अंग्रेजों ने शुरू करवाए। मियाँ और महादेव की नहीं बनती जैसी कहावतें हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसी कहावतें तो शैवों और वैष्णवों में भी चलती है।
0: बिल्कुल।
1: पर इससे कोई यह नहीं कहेगा कि वे एक राष्ट्र नहीं है। वेद धर्मियों और जैनों के बीच बहुत फर्क माना जाता है, फिर भी इससे वे अलग राष्ट्र नहीं बन जाता। चूंकि हम गुलाम बन गए इसलिए अपने झगड़े तीसरे के पास ले गए। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ेगा त्यों त्यों हम समझते जाएंगे कि हमें पसंद न आने वाला धर्म दूसरा आदमी पालता हो तो भी उससे बैर भाव रखना हमारे लिए ठीक नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: हम उस पर जबरदस्ती नहीं करें, सब अपने अपने धर्म का स्वरूप समझकर उससे चिपके रहें और शास्त्रियों और मूल्यों को बीच में न आने दें और झगड़े का मुंह हमेशा के लिए बंद रहेगा।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ गांधी जी कहते थे कि मेरी राय है कि वकीलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया है, हिंदू मुसलमान के झगड़े बढ़ाए हैं और अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ मजबूत किया है। साथियों, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो तटस्थ आदमी उनसे कहेगा कि आप गई बीती को भूल जाएं, इसमें दोनों का कसूर रहा होगा, अब दोनों मिलकर रहिए। लेकिन वकील के पास जाते हैं तो वकील का फर्ज होता है कि वह मुवक्किल की ओर से जोर लगाए।
1: मुवक्किल के ख्याल में भी न हो ऐसी दलीलें मुवक्किल की ओर से ढूंढना वकील का काम है। वकीलों से बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि अंग्रेजों का जुआ हमारी गर्दन पर मजबूती से जम गया। आप सोचिए, क्या आप मानते हैं कि अंग्रेजी अदालतें यहाँ नहीं होती तो वे हमारे देश में राज कर सकते थे? ये अदालतें लोगों के भले के लिए नहीं है जिन्हें अपनी सत्ता कायम रखनी है। वे अदालतों के जरिए लोगों को वश में रखते हैं। लोग अगर खुद अपने झगड़े निपटा लें तो तीसरा आदमी उन पर अपनी सत्ता नहीं जमा सकता।
2: जी हाँ,
1: सचमुच जब लोग खुद मारपीट करके या रिश्तेदारों को पंच बनाकर अपना झगड़ा निपटा लेते थे तब वे बहादुर थे। अदालतें आई और वे कायर बन गए। लोग आपस में लड़कर झगड़े मिटाए, यहाँ यह जंगली माना जाता था। अब तीसरा आदमी झगड़ा मिटाता है, ये क्या कम जंगलीपन है? हकीकत तो ये दिखाती है कि अंग्रेजों ने अदालतों के जरिए हम पर अंकुश लगाया है और अगर हम वकील न बने तो ये अदालतें चल ही नहीं पाती।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी। उसी में हम ढेर सारी बातों को जान पाए। हमने रेल परिवहन की मशीनें, उद्योग और रोजगार और न्याय और सांप्रदायिकता के बारे में भी जाना।
1: जी हाँ,
2: अगले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बातचीत रहेगी कि गांधी जी के सपनों की राज व्यवस्था क्या थी।
0: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन
2: होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े में देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते अनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
2: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और हाजिर हो चुकी हूं श्रोता साथियों कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में एक नए व्यंजन विधि के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हमारी आपसे हर रविवार को मुलाकात होती है एक नए व्यंजन विधि के साथ में, तो आज भी एक ऐसी ही नए व्यंजन विधि को लेकर मैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में हाजिर हुई हूँ। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो व्यंजन विधि मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बाजरे की राब। जी हाँ श्रोता साथियों, बाजरे की राब पारंपरिक रूप से बाजरे के आटे और छाछ या दही की मदद से बनाई जाती है। यह सरल, घरेलू और पेट भरने वाला पारंपरिक व्यंजन है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए कौन सी विधि हमें अपनानी है, ढेर सारी बातें जरूर होंगी। लेकिन जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत सुनना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो उसी दस्तूर को निभाते हुए आइए श्रोता साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले मैंने आपको हमारे आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत यानी कि व्यंजन विधि के बारे में तो बता ही दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि हम घर पर बाजरे की राब कैसे बनाएंगे। तो श्रोता साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो सबसे पहले श्रोता साथियों, बाजरे का आटा हमें 3 बड़े चम्मच लेने हैं। इसके बाद हमें छाछ लेनी है लगभग 2 कप। पानी लेना है श्रोता साथियों हमें 1 कप। नमक है वो हमें स्वाद अनुसार लेना है। साथ ही श्रोता साथियों, 1 छोटा चम्मच जीरा लेना है और 1 छोटा चम्मच घी लेना है। साथ में अजवाइन 1 छोटा चम्मच हमें लेना है। हरा धनिया थोड़ा सा हमें लेना है और साथ ही श्रोता साथियों, 1 चुटकी हींग लेनी है। तो श्रोता साथियों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बाजरे की राब बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। अब यही बात आती है कि हमें इसे बनाने के लिए कौन सी विधि अपनानी है। तो श्रोता साथियों, सबसे पहले विधि की बात कर ही रहे हैं तो आपको सबसे पहले घोल तैयार करना है। सबसे पहले 1 कटोरी में बाजरे का आटा ले, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से घोल तैयार करें। ध्यान रखें श्रोता साथियों कि घोल में गुटिया न रहे। इसके बाद में हमें छाछ मिलानी है। अब इस घोल में छाछ डालकर अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। छाछ और बाजरे के आटे का मिश्रण जितना अच्छी तरह से फेंटेंगे श्रोता साथियों, राब है वो हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब एक कढ़ाई या मोटे तले के बर्तन में तैयार मिश्रण को हमें डालना है। इसे मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाना है श्रोता।

साधारण सामग्री से हम स्वादिष्ट व्यंजन कैसे तैयार हो जाते थे। बाजरा भी हमारी पारंपरिक खाद्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, इसलिए आज की पीढ़ी को भी यह पारंपरिक व्यंजनों और अनाजों से परिचित कराना जरूरी है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से ये वाली व्यंजन विधि तो मेरी आपसे पूरी हुई। आगे मैं आपको एक और व्यंजन विधि के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुख करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले हमने एक स्वास्थ्य प्रद व्यंजन विधि के बारे में जाना, जो कि थी श्रोता साथियों बाजरे की राब। अब यही श्रोता साथियों, एक और स्वादिष्ट व्यंजन विधि के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो है श्रोता साथियों भुट्टे की चाट। कहा जाता है श्रोता साथियों कि मौसम का असली मजा तभी आता है जब हमारी थाली में भी उस मौसम की खुशबू और स्वाद नजर आए। बारिश के मौसम में खेतों में लहराते हरे भरे पौधे और बाजार से सजी ताजे भुट्टे मन को अपने आप खुश कर देते हैं। भुट्टा श्रोता साथियों सिर्फ बारिश के मौसम का स्वाद नहीं है, बल्कि हमारे गांव और खेत खलियान की यादों से भी जुड़ा हुआ है। कभी चूल्हे पर भुना हुआ भुट्टा, तो कभी श्रोता साथियों उबाल कर या अलग अलग मसालों के साथ बनाया गया भुट्टा। हर रूप में इसका स्वाद खास लगता है। आज भी श्रोता साथियों दादी माँ की रसोई में हम भुट्टे से बनाएंगे एक ऐसी चटनी और स्वादिष्ट चीज जिसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज की हमारी श्रोता साथियों रेसिपी है भुट्टे की चाट, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो चलिए श्रोता साथियों, बिना देर किए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि। श्रोता साथियों, भुट्टे की चाट एक स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाला व्यंजन है। इसमें उबले हुए भुट्टे के दानों को प्याज, टमाटर, नींबू और हल्के मसालों के साथ मिलाकर चटपटा स्वाद दिया जाता है। तो श्रोता साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो श्रोता साथियों, सबसे पहले हमें ताजे दो भुट्टे लेने हैं। प्याज लेना है एक बारीक कटा हुआ, टमाटर लेना है एक बारीक कटा हुआ, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेनी है, दो बड़े चम्मच हरे धनिया लेना है, एक नींबू का रस लेना है श्रोता साथियों, साथ ही भुना हुआ जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच लेना है, चाट मसाला एक छोटा चम्मच लेना है, काला नमक है वो स्वाद अनुसार हमें लेना है, सामान्य नमक है वो भी हमें स्वाद अनुसार ही लेना है, लाल मिर्च पाउडर थोड़ी मात्रा में, उबले चने लेने हैं श्रोता साथियों एक छोटा कप, साथ ही जीरा एक छोटा बारीक कटा हुआ। ये तो श्रोता साथियों मैंने आपको बताया इसे बनाने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। यहीं अगर बात करें कि भुट्टे की चाट बनाने की विधि क्या है, तो श्रोता साथियों सबसे पहले हमें भुट्टे को तैयार करना है। सबसे पहले भुट्टे के ऊपर लगे छिलके और रेशे अच्छी तरह से निकालकर भुट्टे को साफ पानी में धो लेना है। अब इन्हें उबाल ले, आप चाहो तो भुट्टे को भाप में भी पका सकते हैं। जब भुट्टे अच्छी तरह से पक जाए तो उसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। श्रोता साथियों, अब चाकू की सहायता से भुट्टे के दानों को हमें सावधानी से अलग कर देना है। दाने एक कटोरी में निकाल ले। अगर आप चाहो श्रोता साथियों, तो बाजार में मिलने वाला साफ किए हुए कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब श्रोता साथियों, इसमें हमें सब्जियां मिलानी है। अब एक बड़े बर्तन में भुने हुए जो भुट्टे के दाने थे वो हमें लेने हैं। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया है वो हमें डाल देना है। अगर श्रोता साथियों आपको पसंद हो तो इसमें बारीक कटा हुआ खीरा और उबले हुए चने भी आप मिला सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च हमें डाल देनी है। सभी सामग्री को अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। अब श्रोता साथियों बात आती है नींबू की। अब इसमें आखिर में श्रोता साथियों इसमें ताजा नींबू का रस हमें डालना है। एक बार फिर से सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला ले। श्रोता साथियों लीजिए तैयार ही हमारे चटपटी और स्वादिष्ट भुट्टे की चाट। तो श्रोता साथियों, ये तो हमने बात की कि भुट्टे की चाट बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और कौन सी विधि को अपनाकर हम बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। तो श्रोता साथियों, यही कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको भुट्टे की चाट के फायदे बताना चाहूंगी। श्रोता साथियों, भुट्टा एक अनाज है और इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कुछ विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। इसके साथ प्याज, टमाटर, नींबू और हरा धनिया जैसी चीजें मिलाने से हम देखते हैं कि चाट की पौष्टिकता और स्वाद दोनों बढ़ते हैं। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि इसमें फाइबर का स्रोत अच्छा है। श्रोता साथियों, भुट्टे आहार में फाइबर पाया जाता है। फाइबर है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए उपयोगी होता है और संतुलित भोजन का हिस्सा भी हो सकता है। ऊर्जा देने वाला भोजन है श्रोता साथियों। मैंने कहा था कि जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि श्रोता साथियों हमारे शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं, इसीलिए श्रोता साथियों इसे संतुलित आहार के हिस्से के रूप में भी लिया जा सकता है। सब्जियों से बढ़ती है पौष्टिकता। श्रोता साथियों, भुट्टे की चाट में हमने टमाटर, नींबू, प्याज, खीरा, हरी सब्जियां
जैसी चीजें थी जो शामिल की थी। इसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और फाइबर होते हैं जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। यही अगर श्रोता साथियों बात करें नींबू की, तो श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि नींबू में विटामिन सी होता है। चाट में डाला गया नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। नींबू का रस ही वो चाट को और स्वादिष्ट बना देता है। साथ ही श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगी, स्वादिष्ट और आसानी से बनने वाला नाश्ता भी है यह। भुट्टे की चाट बनाने में ज्यादा समय और बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती है। इसे घर पर आसानी से हम बना सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। साथियों कहना चाहूंगी कि हमारी पारंपरिक रसोई की खुशबू यही है कि इसमें स्वाद के साथ साथ मौसम का ध्यान भी हम रखें। बारिश के दिनों में मिलने वाला भुट्टा हो या सर्दियों में मिलने वाला बाजरा और तिल, हमारे पूर्वज मौसम के अनुसार उपलब्ध खाद्य पदार्थों को अपने भोजन का हिस्सा बनाते रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमारी थाली में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के अनाज, सब्जियां, फल और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी शामिल हो। श्रोता साथियों अगर आपके घर में भी आज भुट्टा आया है तो उसे सिर्फ उबाल कर या भून कर खाने के बजाय एक बार चटपटी भुट्टे की चाट जरूर बना के देखिए। प्याज, टमाटर, हरा धनिया, नींबू और हल्के मसालों के साथ भुट्टे का स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। और हाँ श्रोता साथियों, चाट बनाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान हमें रखना है। भुट्टे और सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल हमें करना है और तैयार चाट को लंबे समय तक बाहर रख कर खाने से बचें। तो श्रोता साथियों आज दादी माँ की रसोई में हमने बनाई स्वाद और सेहत से भरपूर चटपटी भुट्टे की चाट। कम सामग्री, आसान विधि और स्वाद ऐसा कि हर किसी को पसंद आए। तो श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जाना कि हम बाजरे की राब कैसे बना सकते हैं, इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी और इसे बनाने की विधि क्या है, और साथ ही श्रोता साथियों इसके फायदों को लेकर भी हमने बात की थी। और हमने जाना कि भुट्टे का जो चाट है वो हम घर पर कैसे बना सकते हैं आसानी से, इसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए होगी और आसान विधि क्या है और इसके लाभ क्या है, ढेर सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जानी। और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो श्रोता साथियों में जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम दादी माँ की रसोई अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हूँ कि आज के कार्यक्रम में मेरी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, जो व्यंजन विधि मैंने आपको बताई, वो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई व्यंजन विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।